FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 2026। श्रोताओ, इस समय

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शुद्ध 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट

0: जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

वक्त बनाने वाले परम पिता को हम अपना वक्त देते हैं तो हर खुशी हमारे पास अपने आप ही दौड़ती चली आती है। जिस तरह चुंबक के आकर्षण से लोहा उसके पास खींचा चला आता है, उसी प्रकार परमात्मा और भक्त का संबंध भी है। परमात्मा उस लौ के समान है जो खुद जलकर हमारे जीवन में पसरे अंधेरे का नाश करते हैं, मुश्किल पलों में जबरदस्त संबल देकर हमें सकारात्मकता से जोड़ते हैं, क्योंकि सकारात्मक मन ही सहज रूप से शांत और प्रेरणादायक होता है।

खुद के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो हमें किसी भी व्यक्ति के सलाह या मशवरे की आवश्यकता नहीं होती। बस थोड़ी देर आंख बंद करके जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का आभास हमें हो जाता है। कुछ इन कर्मों को मान लेते हैं और सही राह पकड़कर जीवन में अग्रसर होते हैं, अपने आगामी जीवन को संवार लेते हैं। लेकिन जीवन में कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो बुरे कर्म करके स्वयं मुकर जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनके कर्मों का खाता परमात्मा के पास पूर्ण रूप से लिखा जा रहा है, क्योंकि प्रभु की नज़र से कोई भी जीव बच नहीं पाता।

जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। इस प्रेम को धारण करना भी सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इसे पाने के लिए मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रूरता, क्रोध को त्याग कर वाणी में मधुरता लानी पड़ती है। ये सब आसान काम नहीं है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तभी मन की दबी हुई परतों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं। ये प्रेम सबके मन में आनंद मिठास की भावना घोल देता है, और जब हम इस आनंदमय प्रेम का अनुभव करते हैं तो परमात्मा अपने आप ही हमारे हृदय में आ बसते हैं।

जीवन में जब कोई हाथ और साथ छोड़ दे तब वो परम शक्ति किसी न किसी रूप में हमारा सहारा बनकर हमारे पास उपस्थित हो जाती हैं। कई बार तो हमें ये आभास भी नहीं होता कि इतनी बड़ी मुश्किल से हम बाहर कैसे निकल पाए। जब परमात्मा का सुरक्षा कवच हमारे आसपास होता है तो कोई भी व्याधि, कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता।

वंदना कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौरवर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का भाग 77। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। सुबह 7:10 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के साथ साथ जानकारी साझा करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, हास्य दिवस, रमणीक स्थल शोजा, पर्यावरण में बात होगी उपयोगी पुष्प सूरजमुखी के बारे में। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम शुभप्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। आठ पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 9:00 स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाएगा। इसी बीच 9:18 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के बाद कार्यक्रम आरोग्यम जारी रहेगा। सुबह 10:00 फिल्म संगीत, 10:30 पर हिमाचली गीत आप सुन पाएंगे। सुबह 11:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम आप और हम। 11:30 पर फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। दोपहर 12:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए पेश किया जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा दोपहर 12:30 पर, जिसमें बात होगी विश्व हास्य दिवस के बारे में। बच्चों को बताएं खुलकर हंसने के फायदे, और इसी के साथ कुछ रोचक जानकारियां भी आपके संग साझा की जाएंगी। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 1:10 से 3:00 तक रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। दोपहर 3:10 से शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, जिसमें 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। शाम 5:10 पर आनंद उठाइएगा भजनों का। युवा मंच कार्यक्रम में मेरी पसंद कार्यक्रम आपको 5:30 पर सुनवाया जाएगा। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे शामी गजल। 6:30 पर मिंजरा कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गल्लां तुसां दियां गीतां सां दे सुनवाया जाएगा। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर, जिसमें बात होगी खुम्ब के उत्पादन के बारे में। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, देशभक्ति गीत 8:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही निर्माता निर्देशक, और आज आप सुनेंगे रामानंद सागर।

0: रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 रवि वासरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी। सभा के अंत में रात 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोता, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 सायं 6 यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण 24 परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नतांगतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 सायं 5 यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 12 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 19,200 वर्षात् भवति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम इत्येतस्मै, डॉक्टर जोरम अनिया इत्यस्यै च नीति आयोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येते इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै

अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपो से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 3 मई की सुहानी सी सुबह में आप सभी का स्वागत। और आज के अंक में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। हंसना मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता, हंसता मुस्कुराता चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है। मन की उलझने परेशानियों को हम उस समय भूल जाते हैं जब कोई हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमसे मिलता है। तो चलिए कुछ ऐसे ही गीत के साथ आज के सुप्रभात कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

श्रोताओ, आज है विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी विश्व हास्य दिवस। हर साल दुनिया भर में हंसी और इसके सकारात्मक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1998 में हुई थी। विश्व हास्य दिवस की स्थापना डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी, जो दुनिया भर में फैले लाफ्टर योगा आंदोलन के संस्थापक हैं। इसका पहला आयोजन 10 मई 1998 को मुंबई में किया गया था। हंसने से न केवल मन प्रसन्न रहता है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं। जैसे हंसने से एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और तनाव हार्मोन्स कॉर्टिसोल जो है वो कम होता है। लाफ्टर थेरेपी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और अब जानकारियां साझा करेंगे आज विशेष की। तीन मई से जुड़ी रोचक जानकारियों और ऐतिहासिक जानकारियों की अगर हम बात करें तो सन 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों ने आज ही के दिन हराया था। भारत के राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन का जन्म आज ही के दिन हुआ। सन 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई थी। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन 1969 को आज ही के दिन हुआ। गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म 1977 को हुआ। सन 1999 को देश के पहले 50 किलोवाट के

सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ हुआ। सन 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा आज ही के दिन की थी। सन 1981 को भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो चलिए उन्हीं की अभिनीत फिल्म में से एक गाना आपको सुनवाते हैं।

सुबह के 7:24 और 11 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दुनिया भर में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के अधिकारों के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिवस उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने कार्यों के दौरान अपनी जान गंवाई या कठिनाइयों का सामना किया। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की स्थिति का मूल्यांकन करना और मीडिया की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों से उसका बचाव करना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2026 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस यानी शांति के भविष्य को आकार देना। इसका उद्देश्य ये बताना है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता समाज में शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कितनी ज़रूरी है।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और श्रोताओं अब हम बात करेंगे रमणीक एवं पर्यटन स्थल शोजा के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित शोजा या सोजा एक बेहद शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ये बंजार घाटी का एक छोटा सा गांव है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और देवदार के घने जंगलों के लिए जाना जाता है। जलोरी दर्रा शोजा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो समुद्र तल से 3,120 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। जलोरी दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर के आसान ट्रैक के बाद सलोलसर झील तक पहुँचा जा सकता है। झील के पास ही बूढ़ी नागिन देवी का एक छोटा सा मंदिर है। रघुपुर किला भी शोजा में है जो अब खंडहर बन चुका है। शोजा वाटरफॉल गांव के पास स्थित एक छोटा और शांत झरना है और यहाँ तीर्थन घाटी मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है।

श्रोतो कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं जहां हम बात करते हैं पर्यावरण की, और आज बात होगी पुष्प सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी का फूल अपनी खूबसूरती और अनूठे व्यवहार के लिए जाना जाता है। सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की दिशा की ओर मुड़ा रहता है। सुबह ये पूर्व की ओर होता है और शाम के समय सूरज के साथ साथ पश्चिम की ओर घूम जाता है। इस प्रक्रिया को हेलियोट्रेपिज्म कहते हैं। इसके बीच एक गहरा भूरा हिस्सा होता है जिसमें बीज बनते हैं और चारों ओर पीली चमकदार पंखुड़ियाँ होती हैं। इसके पौधे काफ़ी ऊंचे होते हैं जो आमतौर पर 5 से 12 फीट तक बढ़ सकते हैं। सूरजमुखी के बीजों से स्वास्थ्यवर्धक तेल निकाला जाता है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसके बीज मेवों की तरह भी खाए जाते हैं जो दिल और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं।

आप सुन रहे थे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुपिया कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत लेकर हम स्टूडियोज में बिल्कुल उपस्थित हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं भुवनेश्वरी तनवर और उमा के गाए इस लोकगीत के साथ।

आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं। ईमेल का पता नोट करें, dharmshalaakashwani@gmail.com। पत्र भेजने का पता है, आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण। शुभ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अगला लोकगीत आप सुनेंगे मोहम्मद शब्बीर कुरैशी के गाया हुआ।

आप सुन रहे थे लोक संगीत और हिमाचली गीतों से सजा कार्यक्रम शुभ्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र

0: साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है, शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
3: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Election Commission orders re-polling across all 285 polling stations at Phalta Assembly constituency in West Bengal on the 21st of this month. Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
6: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed on counting duty, supported by 4,624 micro-observers. Our correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the Commission.
7: Security has been tightened due to the counting process on Monday all over the state. Each and every individual on duty at the counting center have been issued a photo ID card with QR code to ensure that there will be no misrepresentation. A security perimeter starting from 100 meters around each counting center has been established. The second entry gates of the counting premises will be secured by the state armed police. The innermost security at the entrance to the counting halls and the EVM strong rooms will be managed by the central armed police forces. In addition to the local and the state police, 65 companies of the central armed police forces have been deployed at the counting centers to further strengthen security arrangements. The state has registered 85.10% votes with 4,87,98,833 voters. Joy, Akashvani reporting from Chennai.
5: In West Bengal, election officials said that all arrangements are in place at 77 counting centers across the state, with multi-layered security in place to ensure transparency. The Supreme Court has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice B.S. Narasimha and Justice Joymalia Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for Trinamool Congress, which had challenged the move. Defence Minister

0: pod at Bhubaneswar. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा।

करण औजला की आवाज़ में अभी आपने बैड न्यूज़ फिल्म का ये गीत सुना। गीत और संगीत भी करण औजला का था। श्रोताओ अब लीजिए सुनिए पुष्पद राइज, इस फिल्म का गीत जावेद अली की आवाज़ में। गीत के वो लिखे हैं रकीब आलम ने और संगीत देवी श्री प्रसाद का है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोता, आपको बता दें कि सुबह ठीक 9 बजे आप सुनेंगे आरोग्यम कार्यक्रम और आज का विषय है अस्थमा रोग कारण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मैरी और डॉक्टर गीतांजलि। विषय विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे कार्यक्रम प्रमुख जतेंद्र पाल सिंह।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अजब प्रेम की गजब कहानी, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और अलीशा चिन्नॉय की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आशीष पंडित ने, संगीत प्रीतम का।

श्रोता तो आपको बता दें कि सुबह ठीक 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। आरोग्यम कार्यक्रम में आज का विषय है अस्थमा रोग कारण और बचाव। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मैरी और डॉक्टर गीतांजलि, और विषय विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे कार्यक्रम प्रमुख जतेंद्र पाल सिंह।

इरशाद कामिल के बोलों को अभी आपने विशाल शेखर के संगीत में सुना। आतिफ असलम का गाया ये गीत था, फिल्म थी टाइगर जिंदा है। भाग मिल्खा भाग, लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, संगीत शंकर एहसान लोई का, गायक कलाकार जावेद बशीर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। आरोग्यम कार्यक्रम में आज का विषय है अस्थमा रोग कारण और बचाव। विषय विशेष

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वस्थ जीवन की राह, सही जानकारी की चाह और बेहतर कल की उम्मीद लेकर हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम आरोग्यम, जहां बात होगी सेहत की, समाधान मिलेगा माहिरों से और हर जानकारी बनेगी आपके स्वस्थ जीवन की ताकत, क्योंकि अच्छी सेहत ही हर खुशी की असली नींव है। तो आइए सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य जागरूकता के साथ शुरू करते हैं आज का विशेष अंक आरोग्यम। श्रोताओं, आज के अंक में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मैरी, जो हमें बताएंगे अस्थमा क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर मैरी, आपका बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमें सरल भाषा में समझाइए अस्थमा क्या है।
1: अस्थमा सिंपल टर्म्स में बोलना है तो एक वर्ड में बोल सकते हैं एलर्जी है
0: जी।
1: सो बेसिकली लंग्स में जो सांस की नाली होती है उसकी साइज कम हो जाती है या बंद भी हो सकता है, उस कारण से जान में खतरा भी हो सकता है अस्थमा। सो यही है सिंपल टर्म।
0: तो आजकल अस्थमा के मरीजों में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं?
1: हाँ जी, इसमें बहुत फैक्टर्स हो सकता है। एक कारण हो सकता है आजकल हमारी एयर क्वालिटी भी खराब हो रहा है, आउटडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। एक और फैक्टर हो सकता है इनडोर एयर पोल्यूशन है, डस्ट ज्यादा है या ऑक्यूपेशन रिलेटेड किसी को हो सकता है। और एक और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी हो सकते हैं, आजकल अवेयरनेस भी लोगों में ज्यादा है
0: जी।
1: अभी लोगों भी दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू द डॉक्टर कि हमारे सांस फूल रहे, दे आर गेटिंग डायग्नोस्ड मोर एंड मोर आल्सो।
0: तो डॉक्टर साहब, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं?
1: इसके कारण बर्थ से एंड तक भी हो सकता है, फ्रॉम बर्थ रिस्क फैक्टर्स हो सकता है। कोई स्टडीज बोलती है बर्थ से जो नॉर्मल डिलीवरीज होती है उन बच्चों में कम है, सिजेरियन सेक्शन से जो पैदा होते हैं उन बच्चों में ज्यादा रिस्क फैक्टर होती है। कोई स्टडीज ऐसे भी है जो बर्थ से रिस्क फैक्टर्स है, बट जो हम मेन रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं डस्ट है, धूल धुआं मिट्टी, मेनली ये
0: मेन कारण मींस हमारा यही होता है।
1: हाँ जी, जो कॉमन रिस्क है।
0: तो क्या ये अस्थमा केवल बच्चों में होता है या फिर किसी भी उम्र में हो सकता है?
1: यूजुअली जो डेफिनेशन है अस्थमा की हम बच्चों में ही डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इनेटली उनको एलर्जी किसी चीज में, बट अडल्ट में भी हो सकता है, फर्स्ट अटैक अडल्टहुड में भी आ सकता है। बट अडल्ट्स में क्या होती है, अदर रिस्क फैक्टर्स भी एड ऑन हो जाती है, जैसे स्मोकिंग हो सकता है, उन किसी ने घर में चूल्हा जला रहे थे वो भी एड ऑन हो सकता है। सो उनमें सिर्फ अस्थमा ही है बोलना मुश्किल है, और भी बीमारी हो सकता है अडल्ट्स में। तो
0: डॉक्टर साहब, इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं आपके पास, मरीज क्या लक्षण लेकर आते हैं कि हमें पहचान आ जाए कि ये अस्थमा का पेशेंट है?
1: जो मेन सिम्टम होता है सांस फूलता है अचानक से, सडन ऑनसेट हम बोलते
0: हैं।
1: मरीज एक मिनट ठीक है, दूसरा मिनट ठीक नहीं, अचानक से उनको सांस फूलने लग जाता है। फिर छाती से सीटी जैसा आवाज, शें शें की आवाज हो सकता है, नॉइजी ब्रीदिंग हो सकता है, वो भी एक क्लू हो सकता है वो अस्थमा ही है। और तीसरा है, एक क्लू हो सकता है, कई बार पेशेंट खुद ही बोलते हैं एक्सपोजर है उनको, कुछ डस्ट से एक्सपोजर हुआ, कुछ धूल धुआं मिट्टी से कुछ तो हुआ उनको सांस फूलने लगने से पहले। सो ये भी क्लू हो सकता है कुछ ये रिस्क फैक्टर से ये अटैक हुआ है उनको।
0: हम ये कैसे पहचाने कि ये सामान्य खांसी है या फिर अस्थमा की शुरुआत है?
1: सामान्य खांसी जो नॉर्मल खांसी जुकाम होती है, जो यूजुअल वायरल यूआरटीआई बोलते हैं हम
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: सब तो डेवलप्स ओवर 2-3 डेज, इट इज नॉट सडन ऑनसेट, अचानक से नहीं होती है,
0: लंबा टाइम के लिए चलते
1: हैं। 2-3 डेज

0: इस टाइम लेके जाती है एंड इट इज नॉट डेंजरस, बट आस्थमा की जो होती है वो सडन ऑनसेट होती है, छाती से शेंग शेंग की आवाज
1: एकदम
0: हो
1: से
0: सकता है।
1: शुरू होने वाली बीमारी।
0: हाँ जी
1: रात में अगर बार बार कोई मरीज खांस रहा है
0: हाँ
1: या
0: जी,
1: उसे बार बार खांसी आ रही है, तो क्या ये अस्थमा का संकेत है?
0: उसमें भी बहुत फैक्टर्स है। पहले एज हम देखते हैं, एज क्या है मरीज की,
1: ठीक है जी
0: यंग पेशेंट है ओल्ड पेशेंट है,
1: जी
0: उनकी उनमें से क्या है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, वो स्मोकर है नॉन स्मोकर है, वो ऑक्यूपेशन क्या कर रहा है, वो ऐसे ऑक्यूपेशन में तो नहीं है जो ज्यादा डस्ट उनको एक्सपोज हो रहा है। घर में पेट्स हम पूछते हैं, एक्सपोजर टू पेट्स, डॉग्स है, कैट्स है, बर्ड्स है, क्या है, वो
1: ठीक है,
0: सारी भी हो
1: उसमें से
0: सकती।
1: एलर्जी के कारण भी हो
0: हाँ
1: सकते
0: जी हाँ जी, ये सब हिस्ट्री में पूछते हम, ये इसमें फिर इससे हम डायग्नोसिस बनते हैं अस्थमा हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब। क्या ये हर सांस फूलना को हम कह सकते हैं कि ये अस्थमा ही है या फिर कुछ और भी हो सकता है?
0: नहीं, हर सांस फूलना अस्थमा नहीं बोल सकते, अलग अलग कारण हो सकता है। जो अचानक से हम सांस फूल रहा है किसी
1: जी
0: को,
1: जी जी
0: अगर हम बोल रहे हैं, मैंने पहले ही सेंटेंस बता दिया, अचानक सांस फूलता है अस्थमा में, सबको नहीं बोल सकते, जो अचानक सांस फूल रहा है सबको अस्थमा है। जैसे मैं बताया ओल्ड पेशेंट में, स्मोकर्स में, अगर उनको हो रहा है तो उनमें से सीओपीडी की बीमारी भी हो सकता है,
1: ठीक है
0: अगर
1: जी
0: छाती में हवा भर गया, न्यूमोथोरैक्स की बीमारी बोलते हैं, वो भी हो सकता है, वो उसमें भी अचानक से सांस फूल जाएगा, या किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसमें भी
1: ठीक है।
0: सांस अचानक से फूलने लग जाएगा। सो हर पेशेंट को नहीं बोल सकते उनको
1: हमें
0: अस्थमा है।
1: उसकी प्रॉपर जांच करानी पड़ेगी।
0: हाँ जी हाँ जी, डायग्नोसिस ठीक से बनानी
1: ठीक
0: पड़ेगी,
1: है
0: हिस्ट्री से पूछ के, रिस्क फैक्टर पूछ के, फिर एक्सरे बेसिक इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो हम उसके लिए क्या क्या जांच कराते हैं जिससे हमें डायग्नोस हो सकता है कि ये अस्थमा का मरीज है या कोई और बीमारी है?
0: हाँ जी, अगर कोई मरीज आ रहा है हॉस्पिटल में, अचानक से सांस फूल रहा है, उनको बैठ के ही सांस फूल रहा है, इस कंप्लेंट से आ रहा है, तो हम बेसिक अटेंडेंट से पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, ये सारी चीज़। फिर हम बेसिक चेकअप करेंगे, उनकी वाइटल्स, पल्स रेट कितना है, उनकी
1: ठीक है
0: ऑक्सीजन लेवल कितना है, कम है कि नॉर्मल है। फिर हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे करा सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत तो रूल आउट हो जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली ये पेशेंट को।
1: कोई ऐसा सटीक टेस्ट भी है जिससे पता लग सकता है कि ये अस्थमा ही है?
0: वैसे तो अक्यूट सेटिंग में, अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है,
1: जी
0: हम इतने ही टेस्ट से हम डायग्नोस करेंगे पेशेंट को क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगी जो भी है। हम अगर छाती से आवाज आ रहा है, नॉइजी
1: जी
0: ब्रीदिंग है, हम पेशेंट को तुरंत वाप देते हैं, स्टीरॉइड्स देंगे, ट्रीटमेंट तो सेम रहेगी,
1: ठीक है जी
0: बेसिक जो इमरजेंसी
1: ठीक
0: की
1: है जी
0: ट्रीटमेंट है। सो इसी इन्वेस्टिगेशंस इमरजेंसी में हम करेंगे। अगर कोई पेशेंट जनरल फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, जो ऑलरेडी नोन केस ऑफ आस्थमा है,
1: ठीक है
0: ऑलरेडी इन्हेलर ले रहे हैं, उनमें से इन्वेस्टिगेशंस अलग होगा, जो मैनेजमेंट फॉलोअप, जो भी टेस्ट हम लिखते वो अलग होगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ने के
0: हाँ
1: समय
0: जी
1: सांस फूल रही है,
0: हाँ जी,
1: तो क्या वो भी अस्थमा के ही लक्षण हैं?
0: वो भी जैसे मैं बताया था पहले भी, अगर कोई बोल रहे ओ, इतने साल से मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रहा है, वो
1: जी,
0: भी एज देखते हैं किसी को,
1: हमें उनकी
0: यंग
1: प्रॉपर
0: पेशेंट
1: हिस्ट्री
0: है।
1: लेनी पड़ेगी।
0: हाँ जी हाँ जी, पूरा उनकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सांस में बहुत भी बीमारियां हैं अस्थमा के अलावा।
1: और ये धूल धुआं प्रदूषण या फिर जब मौसम बदलता है तो अस्थमा के जो केसेस होते हैं उसमें काफी बढ़ाव दिखता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है?
0: वही है अस्थमा, जैसे मैं पहले टर्म बताया, एलर्जी होता है सिंपल टर्म में।
1: जी
0: सो वैसे ही हम बोलते हैं एलर्जन, एलर्जन मतलब जो एलर्जी करने वाली चीज़,
1: ठीक है जी
0: वो हवा में अगर मौसम बदल गया तो वो इंक्रीज हो सकता है, जैसा पोलन सीजन बोलते हैं,
1: ठीक
0: जो
1: है
0: हवा में पोलन की काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो वो बहुत कॉमन सी एलर्जन होती है, जो
1: ठीक है
0: एलर्जी
1: ठीक
0: करने
1: है।
0: वाली चीज़ होती है। सो उससे लोगों को ज़्यादा अटैक पड़ सकता है।
1: इसमें डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं उसमें कई बार डॉक्टर इनहेलर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि
0: हाँ जी हाँ जी
1: इनहेलर का
0: हाँ
1: यूज़
0: जी
1: करना चाहिए, लोगों में उसके लिए काफ़ी वहम है कि हमें इनहेलर नहीं यूज़
0: हाँ
1: करना,
0: जी,
1: हमें खाने वाली दवाएं ही लेनी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: ये तो मिथ है, इट इज़ नॉट द ट्रूथ, ये तो एक रूमर है। इनहेलर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट,
1: ठीक है
0: मतलब
1: जी
0: द फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। जो हम स्टीरॉयड बोलते हैं वही है इसको ये इन्फ्लेमेशन को, ये एलर्जी को कम करने वाली चीज़ है। इससे एडिक्शन नहीं होती है, इट इज़ नॉट एडिक्टिव, ये कंटेजियस नहीं है। कोई लोग बोलते हैं मुझे एलर्जी है तो बच्चों को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एलर्जी आपको है आपको ही होगा, ये तो फैलने वाली नहीं है। इफ़ यू टेक इन्हेलर्स इट इज़ नॉट एडिक्टिव, एडिक्शन नहीं होती है इसमें इन्हेलर से।
1: तो क्या ये इन्हेलर टैबलेट से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं?
0: जी ना, गाइडलाइंस आस्थमा की गाइडलाइंस है, वर्ल्ड गाइडलाइंस है, वो भी बोल रही है कि इन्हेलर इज़ द फर्स्ट चॉइस, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब वही बेस्ट टू द बेस्ट ऑप्शन है फॉर द इन द ट्रीटमेंट ऑफ आस्थमा। सो वही जो स्टीरॉयड हम देते हैं उसमें कंटेंड होती है जो इन्हेलर में, और भी चीज़ होती है जो सांस की नाली थोड़ा सा खुलने के लिए दवाई भी होती है उसमें। हम स्टीरॉयड जो दवाई है इन्हेलर में, हम दवाई की रूप में भी देते हैं कोई सिवियर केसेस में,
1: जी जी,
0: बट जो जनरली है जो ट्रीटमेंट है जो इमीडिएट एक्शन के लिए, इन्हेलर ही बेस्ट टू द बेस्ट है, क्योंकि फ्यू सेकेंड्स में आपको फर्क मिल जाएगा। क्योंकि सीधा दवाई जो इन्हेलर आप लेते हो सीधा लंग्स में जाएगी, फिर इफेक्ट भी सेकेंड्स में मिल जाएगा, क्योंकि आस्थमा में हमें सेकेंड्स में चाहिए, क्योंकि पेशेंट को इतना सांस फूलता रहेगा, हम दवाई से वेट नहीं कर सकते, दवाई की एक्शन तो टाइम लगेगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या ये अस्थमा एक पीढ़ी से या फिर एक पिता से अपने बच्चों को फैल सकता है?
0: ऐसे हवा से फैल नहीं सकता, बट जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, बट ऐसे नहीं है जो लोग एक घर में रह रहे एक दूसरे को स्प्रेड हो जाएगा हवा से, ऐसे नहीं है। माँ बाप को था पहले अस्थमा, बच्चा को हो सकता है ना भी हो सकता है।
1: तो इसकी दवाई हमें कितने टाइम तक लेनी पड़ती है, पूरा उम्र लेनी पड़ेगी या कुछ समय होता है कि उसके बाद हम इसको बंद कर सकते हैं?
0: अगर एक अटैक अभी आपको हुआ, फिर डॉक्टर्स आपको इन्हेलर प्रिस्क्राइब करेंगे, कोई दवाई भी टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आस्थमा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, ऐसा नहीं है आपकी सांस की नाली बंद ही रहती है हमेशा। रिवर्सिबल मतलब उस अटैक की टाइम बंद हो जाती है वो सांस की नाली, फिर दवाई लेने से ठीक भी हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। कोई डॉक्टर्स एक मंथ के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे एक इनहेलर, एक स्पेसिफिक डोज, फिर आपको चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, फिर आपकी सिम्टम्स कंट्रोल्ड है, सब कुछ नॉर्मल है, तो बंद भी कर सकते हैं, डोज कम भी कर सकते हैं। इट इज एस्केलेशन डीएस्केलेशन, ऐसा नहीं है आप उम्र भर लेते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है।
1: ये अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाता है या फिर इसे हम जस्ट कंट्रोल ही कर सकते हैं?
0: एक चीज है अस्थमा में, इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, बट ये एलर्जी जो आपको है वो हमेशा रहेगी इंसान के अंदर। एलर्जी को हम क्यूर नहीं कर सकते, जब भी अटैक हो रहा है आप उनको दवाई लेना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। मेन हम आस्थमा में बोलेंगे प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट,
1: जिस चीज से करना पड़ेगा।
0: हाँ जी, जिस चीज से एलर्जी हो रहा है, धूल धुआं मिट्टी से हो रहा है, तो वो सारी आपको अवॉइड करना चाहिए, वही मेन ट्रीटमेंट है।
1: तो क्या अस्थमा के रोगी व्यायाम कर सकते हैं?
0: हाँ जी, एक्सरसाइज तो कर सकते, बट एक और मैं इसमें मेंशन करना चाहती हूँ, एक चीज होती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आस्थमा। कोई लोग यंग पेशेंट, यंग मेल्स जो ज्यादा जिम जाते हैं, उनमें ये इतना कॉमन कंडीशन भी नहीं है, ये रेयर चीज है, जो एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज उनको आस्थमा की अटैक हो जाती है।
1: इसका मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए?
0: हाँ जी, सो विथ डॉक्टर सजेशन। ऐसे कभी भी नहीं हुआ आपको, ऐसे रिस्क फैक्टर है नहीं, तो इसमें घबराने की कुछ है नहीं, कोई रेयर पॉपुलेशन में ऐसे भी चीज नोटिस किया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा को बंद कर देते हैं कि हम अब ठीक हो गए, हमें दवा को बंद कर देना चाहिए, ये कितना खतरनाक होता है?
0: ये गलत चीज है, खुद ही अपनी मर्जी से कर देते कोई लोग, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि पहले भी बताया था मैंने आस्थमा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, दवाई लेने से ठीक हो जाता है सारी सांस की सिम्टम जो भी है, खांसी सब कुछ, उसको देख के लोग बंद कर देते हैं दवाई को, बट ये गलत चीज है। डॉक्टर की सलाह से पहले उनको दिखाना चाहिए क्या क्या नेक्स्ट डोज कम करना है या पूरी तरह से बंद करना है, वो डॉक्टर की डिसीजन होगा बेस्ड ऑन फर्दर सिम्टम्स, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी है।
1: डॉक्टर साहब, अस्थमा के मरीज को खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें उनको लेनी चाहिए, कौन से परहेज करना चाहिए?
0: विथ रेस्पेक्ट टू डाइट, अस्थमा जो हम जनरली बोलते लंग की सिम्टम के लिए बोलते, बट इसमें एलर्जी में कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किसी को आस्थमा के साथ स्किन रैशेस भी हो

0: सकता है,
1: ठीक है जी।
0: अपर एयरवे, या नाक से छींके आ सकता है, या
1: जी जी
0: आईज में रेडनेस हो सकता
1: आंखों
0: है,
1: में पानी आना,
0: पानी आ सकता है, एलर्जी, ये ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व कर सकता है, ये
1: ठीक है।
0: कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन भी हो सकता है. सो डाइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लंग्स जो भी है, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कोई डाइट नहीं है जो एक्सेसरबेट कर सकता है, अटैक कर सकता है, बट विथ रेस्पेक्ट टू स्किन वो सारी चीज़, तो डाइट भी होती है. जो लंग्स की जो आस्थमा अलर्जी करता है वो मेनली एयरबोर्न पार्टिकल से होती है.
1: ठीक है,
0: सो
1: जो
0: उस
1: पार्टिकल्स हवा में।
0: हाँ जी हाँ जी सो वो वाली चीज़ हम ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, डाइटिंग की रोल ज़्यादा नहीं है इसमें. तो
1: और बच्चों में अस्थमा के शुरुआती संकेत क्या होते हैं?
0: बच्चों में यंग यूजुअली जो हम डिस्क्राइब करते हैं, बच्चों लेस देन 10 ईयर्स से ही शुरू हो
1: जी
0: जाती है, उनको सेम सिम्टम्स तो सेम ही होती है, सांस फूल जाता है उनको, फिर इन्हेलर से टीक होता है, जो लंग फंक्शन कम भी हो सकता है. वन ऑफ द फॉलो अप टेस्ट वी विल एडवाइज इज हम लंग फंक्शन चेक करते हैं
1: ठीक
0: कितना
1: है।
0: है उन बच्चों में भी, अडल्ट में भी हम चेक करते हैं
1: कुछ
0: वैसे.
1: लोगों ने घर पे पालतू जानवर रखे होते हैं, क्या उसका भी होता है ये अस्थमा फैलाने में?
0: हाँ जी ज़रूर, कई लोगों में ये भी रिस्क फैक्टर्स है, डॉग हेयर, जो कैट हेयर, बर्ड्स है, जो
1: जी।
0: ऑक्यूपेशन पेट शॉप जो है उनके पास है, उनको आस्थमा की रिस्क होती है. बट सबको रिस्क है वैसे बोलने में मुश्किल है,
1: जी।
0: अगर कोई परसेंटेज की पॉपुलेशन में होती है ये
1: तो क्या ये अस्थमा अटैक जानलेवा भी हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है. आस्थमा अटैक में भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर होती है. माइल्ड अटैक भी हो सकता है, किसी को मीडियम सा अटैक भी हो सकता है,
1: ठीक है।
0: किसी को सीवियर अटैक हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है.
1: तो अगर घर पे बाई चांस किसी को अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो सबसे पहले उसके घर वालों को क्या करना चाहिए कि उसका बचाव हो सके?
0: सबसे पहले करना चाहिए वो जो एक्सपोजर किस चीज़ से हुआ है, कुछ तो धूल धुआ डस्ट कुछ तो हुआ होगा वहाँ पर. फिर सबसे पहले एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए, वो वाला रूम से हटा देना चाहिए मरीज को. दूसरा, जो ऑलरेडी आस्थमेटिक से उनके पास इन्हेलर होगा, कुछ पंप होगा
1: जी
0: उनके पास, सबसे पहले उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए 2 पफ दिला देना चाहिए. फिर उसके बाद उनको सिम्टम को देखना है कितना सीवियर है सिम्टम, बहुत सांस फूल रहा है, बैठ के सांस फूल रहा है, एक दो शब्द भी नहीं बोल पा रहे, एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं पा रहे, ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए.
1: तो डॉक्टर साहब, इनहेलर लेने का सही तरीका क्या होता है?
0: सही तरीका है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
1: जी
0: जो हम MDI मीटर डोज इन्हेलर जो
1: जी
0: वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे पहले लंबा सांस लेना चाहिए, धीरे धीरे छाती खाली करके फिर एकदम एक शॉट से इनहेल करना चाहिए, जो प्रेस करके, जो MDI
1: जी
0: इनहेलर
1: जी
0: को. फिर एक शॉट इनहेल लेने के बाद सांस नहीं छोड़ना चाहिए, माइंड में 10 सेकेंड के लिए सांस ऐसे होल्ड करके, ब्रेथ को होल्ड करके, ताकि
1: ठीक है।
0: सारी दवाई अंदर चले जाए लंग्स के अंदर, फिर सांस छोड़ना है, ऐसे करके करना पड़ेगा. फिर आस्थमा, एक और चीज़ है आस्थमा में, MDI में जो सारी इनहेलर्स में स्टीरॉयड भी हम देते, सो इनहेलेशन लेने के बाद माउथ को रिंस भी करना पड़ेगा,
1: ठीक है।
0: वो भी एक प्रिकॉशन है.
2: आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम. इस कार्यक्रम का शेष भाग लेकर लौटेंगे 9:30 पर. 9:19 हुए हैं, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे. रिले के लिए कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार.

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 मेगा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कुल्लू जिला के आनी में वाहन दुर्घटना में चार अध्यापिकाओं की मौत। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत किन्नौर जिला में फसलों की गुणवत्ता में लाया जा रहा सुधार। देश भर में आज स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से वर्षा का क्रम जारी। आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के अंतर्गत शमशर गुगरा सड़क मार्ग पर कल एक वाहन के चीड़ के पेड़ की चपेट में आने से यह अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। प्राप्त सूचना के अनुसार हादसे के समय वाहन में चालक सहित कुल सात लोग सवार थे, जिनमें छह स्कूल अध्यापिकाएं शामिल थीं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: इस भीषण दुर्घटना में चार अध्यापिकाओं की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई, जबकि चालक और दो अन्य अध्यापिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से दो शिक्षिकाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें IGMC शिमला रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान स्नेहलता बंती कौंडल, सीमा आजाद और उषा कुमारी के रूप में हुई है तथा ये सभी बुछैर स्कूल में कार्यरत थी। उनकी अचानक मृत्यु से शिक्षा जगत सहित पूरे इलाके में शोक की लहर है। SDM मानी लक्ष्मण सिंह कनेर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति की अंतरिम राहत राशि प्रदान की गई है, जबकि घायलों को 5,000 रुपए की सहायता राशि मौके पर प्रदान की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस हादसे पर चार लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है और पूरे समुदाय के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। भारत आ रहे मार्शल आइलैंड्स ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। जिला किन्नौर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 15 क्लस्टर संचालित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना, लागत कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए जिला प्रशासन तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: जिला किन्नौर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत वर्तमान में जिले में कुल 15 क्लस्टर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें कल्पा विकास खंड में 3, पू विकास खंड में 6 तथा निचार विकास खंड में 6 क्लस्टर शामिल हैं। इन 15 क्लस्टरों के माध्यम से लगभग 750 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में 125 किसान बागवानों को जोड़ा गया है, जिससे जिले में कुल लगभग 1,903 किसान बागवान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती के विस्तार को और मजबूत करने के लिए जिला किन्नौर में 3 नए क्लस्टर भी जोड़े जाने प्रस्तावित है, जिसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। इन नए क्लस्टरों के माध्यम से 150 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा तथा 375 नए किसान बागवानों को योजना से जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी।
0: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस अवसर का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में, यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से बारिश हो रही है। धर्मशाला, मंडी तथा ऊना में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा का समाचार है। कुल्लू तथा चंबा में बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में कल भी कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों व फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए कल 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 5 मई तक रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, शास्त्री भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नर्सिंग संस्थान खनेरी में 17 प्रशिक्षु नर्सें TB पॉजिटिव। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, रामपुर में छात्राएं TB से संक्रमित, SDM की जांच रिपोर्ट में भी पुष्टि। CBSE की तर्ज पर अपग्रेड होंगे 300 सरकारी स्कूल, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश सरकार ने शिक्षा निदेशालय को दिए हर जिले से स्कूलों का चयन करने के निर्देश। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मेरिट में आने पर मनपसंद पोस्टिंग, 5 से CBSE स्कूलों के लिए काउंसलिंग। दैनिक जागरण की खबर है, चलती बोलेरो पर गिरा पेड़, 4 अध्यापिकाओं की मौत, आने की शमशर गोगरा सड़क पर बाली ओल में हुआ हादसा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुल्लू जिला के आनी में एक वाहन दुर्घटना में 4 अध्यापिकाओं की मौत, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत किन्नौर जिला में फसलों की गुणवत्ता में लाया जा रहा सुधार। देश भर में आज स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से वर्षा का क्रम जारी। आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आरोग्यम कार्यक्रम का शेष भाग।
1: तो क्या धूम्रपान जैसे कि पैसिव स्मोकिंग है, इससे भी इसका खतरा बढ़ता है?
2: हाँ जी, जैसे स्मोकिंग है वैसे ही पैसिव स्मोकिंग की रिस्क भी रहता है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। कोई भी चीज़ें ये अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है।
1: और सर्दियों में अस्थमा का हम देखते हैं कि इसके केसेस काफ़ी बड़े होते हैं, उसका क्या मुख्य कारण है?
2: हाँ जी, सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाती है, सबको वायरल खांसी जुकाम हो जाती है, जो वायरल इन्फेक्शन URTI बोलते हैं।
1: जी
2: एक और चीज़ में पहले भी बताई, पोलन की संख्या, ये जो काउंट, पोलन
1: जी
2: काउंट,
1: जी
2: पोलन सीजन हो जाती है। सो ये कारण हो सकता है जो सर्दी की सीजन में ऐसे इंक्रीज्ड केसेस हो रहा है।
1: डॉक्टर साहब, क्या शहरों में रहने वालों को ज़्यादा खतरा है या फिर गांव के लोगों को ज़्यादा खतरा होता है इस?
2: ऐसे लोग सोचते कि शहर में पोल्यूशन ज़्यादा है, सो तो शहर वाले लोगों को ज़्यादा हो सकता है, बट रिस्क तो किसी को भी हो सकता है। धूल धुआं मिट्टी शहर में भी होती है, गांव में भी हो सकता है। कोई घर में, गांव के घर में चूल्हा
1: जी,
2: जला रहे हैं, उसमें भी रिस्क होती है। रिस्क तो किसी को भी हो सकता है।
1: अगर मरीजों के लिए एक विशेष सलाह देनी हो तो आप क्या देना चाहेंगे?
2: हाँ जी, आस्थमा में ऐसे डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर इफ़ यू आर अवेयर कि क्या चीज़ कॉज कर रही है, यू शुड बी अवेयर कि ये धूल धुआं मिट्टी से, उससे आप दूर रहना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। ये सारी प्रिकॉशंस आप लेनी चाहिए।
1: जी,
2: आस्थमा इट इज़ अ वेरी मच ट्रीटेबल कंडीशन, पेशेंट कैन लिव ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ। आजकल ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ इनहेलर ही है, और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आजकल, लेटेस्ट एडवांसेस भी है इसमें।
1: डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर नेबुलाइजर का रिकमेंड करते हैं, तो क्या बार बार नेबुलाइजर लेना ठीक है?
2: हाँ जी, नेबुलाइजेशन हम एडवाइस करते हैं टेम्प्रवरी के लिए, वो अटैक को सबसाइड करने के
1: जी
2: लिए।
1: जी
2: कोई इतना सांस फूल रहा है उस टाइम हम उनको नहीं बोल सकते इनहेलर ले लो, उतना फोर्स भी नहीं कर पाएंगे। इन पेशेंट्स में हम नेबुलाइजेशन सजेस्ट करते हैं, या बुजुर्ग लोग में जिनको हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन नहीं
1: जी
2: है,
1: जी
2: कॉग्निशन नहीं है इतना समझने के लिए, उन लोगों में हम नेबुलाइजेशन एडवाइस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बट वैसे तो एज इन यूजुअल दिस थिंग, नेबुलाइजेशन इज फॉर अक्यूट अटैक्स, टेम्प्रवरी के लिए।
1: कुछ महिलाओं में भी हमें लक्षण दिखते हैं अस्थमा के, उनमें भी यही लक्षण रहते हैं या फिर उनके लक्षण अलग होते हैं?
2: वेमेन में, मेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नंबर्स वाइज हम बोल सकते हैं डिफरेंस है मेन एंड वेमेन में, वेमेन में
1: जी
2: ज़्यादा
1: जी
2: होती है, बट सिम्टम वाइज तो इतना डिफरेंसेस नहीं है, सिम्टम तो सेम रहे, तो
1: अगर
2: उनको
1: गर्भ
2: फर्क।
1: अवस्था में कोई महिला को अस्थमा हो जाए तो उसको क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां लेनी पड़ेंगी?
2: हाँ जी, घर में जो विमेन के लिए हम बोल सकते, घर में जो चूल्हा जलाते, इंडोर एयर पोल्यूशन करते हैं,
1: ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
2: प्रेगनेंसी में वो जो सर्टेन ब्लड में चीज होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, चेंज होती है, सो वो आस्थमा को फेवर कर जाती है। प्रेग्नेंट विमेन में आस्थमा की रिस्क ज़्यादा है वैसे ही।
1: तो
2: सो
1: उसमें दवाइयों का क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उनको क्या इनहेलर यूज कर?
2: इनहेलर्स आर वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, सेम जो हम नॉन प्रेग्नेंट पीपल को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को ही सेम ही हम
1: जी
2: प्रिस्क्राइब
1: जी
2: करते हैं। दे आर वेरी, इनहेलर्स आर वेरी सेफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैबलेट्स जो अगर हम स्टीरॉयड देना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कितना महीना है क्या है।
1: कौन से महीने में
2: हाँ,
1: चल रहा
2: बाकी
1: है?
2: जो एंटी एलर्जिक्स भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं,
1: ठीक
2: वो
1: है,
2: हम यूजुअली नहीं करते प्रेगनेंसी में, बट मेन ट्रीटमेंट इज द इनहेलर इटसेल्फ।
1: डॉक्टर साहब, आपके पास कुछ ऐसे मरीज आते होंगे जिनके मन में कई बार इसको लेकर वहम होता होगा, अस्थमा को लेके, आप वो बताएंगे कौन से वहम लेकर आते हैं लोग आपके पास?
2: आजकल लोगों को अवेयरनेस है, जैसे पहले था, अभी तो है नहीं।
1: जी,
2: आजकल एक ही मिथ मैंने देखा, एडिक्शन तो नहीं होती है इनहेलर से, कोई लोग
1: ठीक है,
2: पूछते इनहेलर से आदत बन जाती है, ऐसा नहीं है। आस्थमा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, कोई कंडीशन है रेस्पिरेटरी लंग्स में जो लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए, बट आस्थमा ऐसी डिजीज नहीं है जो आपको हमेशा लेते रहना पड़ेगा। इनहेलर एक बार ले लिया तो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ फॉर अ टेम्प्रेवरी अमाउंट ऑफ टाइम, डिपेंड, वो भी डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स।

0: कितना फ्रीक्वेंसी है सिम्टम्स, किसी को हफ्ते में एक ही बार हो रहा है तो वो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: ही कम चांसेस है उनको, उनको रोज लेने की जरूरत नहीं होती है. सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट.
1: डॉक्टर साहब, विश्व अस्थमा दिवस जो कि 5 मई को हर साल मनाया जाता है, तो उस पर आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेन चीज है बी अवेयर ऑफ योर ओन रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंट सच अटैक्स एंड ऑलवेज गेट वैक्सीनेटेड. आजकल वैक्सीनेशन भी गाइडलाइंस में आ गई है, जो
1: जी
0: हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं,
1: जी
0: इन्फ्लुएंजा
1: जी
0: वायरस की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, न्यूमोकोकस वैक्सीन होती है, जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के लिए,
1: जी जी
0: वो प्रिवेंट करने के लिए वो भी वैक्सीन आ गई. आजकल वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, हमारी इंडिया में भी जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं, जो जिन्होंने ले सकते हैं वो ले सकते हैं, वो ले लेंगे तो बेटर होगा.
1: और बाकी जो भी दवाई लेनी है वो डॉक्टरी सलाह से ही
0: हाँ
1: लेनी
0: जी,
1: चाहिए।
0: जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर, वॉट एवर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग, उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा. उसके हिसाब से करेंगे तो कंट्रोल भी बेटर रहेगा, आपको प्रिकॉशन भी मिल जाएगा.
1: डॉक्टर मैरी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू.
1: आरोग्यम के इस अंक में अस्थमा के बारे में और जानकारी लेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गीतांजलि जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर गीतांजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी.
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आयुर्वेद में अस्थमा को किस नाम से जाना जाता है?
2: आयुर्वेद में मुख्य रूप से इसे तमक श्वास के नाम से जाना जाता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वात और कफ दोष जो है
1: जी
2: वो असंतुलित हो जाते हैं, और जिससे कि श्वसन मार्गों में रुकावट पैदा हो जाती है, और इसी के कारण अस्थमा रोग ये जो है वो हो जाता है.
1: जी तो आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा होने का मुख्य कारण क्या होते हैं?
2: आयुर्वेद के अनुसार मुख्य कारण इसका ये है, जो हमारा खान पान, और उससे भी ज़्यादा सबसे जो हम कम बात करते हैं जिसके बारे में, हमारा पाचन संस्था से ही ये भी रोग जुड़ा हुआ है.
1: जी
2: जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, वो अच्छी तरह से अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अच्छी तरह से उसका पाचन नहीं हुआ है, तो वो अनडाइजेस्टेड रहने की वजह से आम पैदा करता है. आम मतलब होता है टॉक्सिन्स, बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है, और
1: जी
2: वही जाके आगे कफ के साथ मिलके, कफ बढ़ाते हैं बॉडी में, और कफ के साथ मिलके वो हमारे लंग्स की जो नलियां हैं उनमें फंस जाते हैं, और आगे ये श्वसन रोग जो है, अस्थमा का जो रोग है उसे उत्पन्न करते हैं.
1: तो क्या गलत खान पीन और दिनचर्या से भी अस्थमा बढ़ता है?
2: बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हमारे खाना पीना और दिनचर्या जो है उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, जो
1: जी
2: तमक श्वास है उसका. क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर हम खाना पीना अच्छे से कर रहे हैं तो
1: जी जी
2: हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो नहीं बनते. पर जब हम खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रात को ढंग से टाइम पर सो नहीं रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, चिकना खाना ज़्यादा खा रहे हैं, इस तरीके के जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं अगर अपनी दिनचर्या में, तो उससे ये जो रोग है नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि कफ बढ़ेगा,
1: जी
2: और ठंडा खाना वाना पीने से और रात को लेट सोने से ये सबसे वात बढ़ता है, तो कफ और वात के जो है असंतुलित हो जाने से ये रोग जो है उत्पन्न हो जाता है.
1: तो डॉक्टर साहब, क्या मौसम बदलने से अस्थमा बढ़ना आयुर्वेद में सामान्य माना जाता है?
2: बिल्कुल, जो आपका जब ये ऋतु संधि आती है,
1: जी
2: जिसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, जब सीजन एक चीज सीजन से दूसरे सीजन को चेंज करता है, उस ऋतु संधि के दौरान जो है हमारा तमक श्वास ये बढ़ता है,
1: जी
2: और इसके होने की संभावनाएं ज़्यादा उस टाइम पर हो जाती हैं. क्योंकि जैसे अगर हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ अगर हम जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारा कफ जो है सर्दियों में जमा हुआ है, और वो जब पिघलता है तो उस टाइम पर नलियों में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो
1: जी
2: इसलिए
1: जी
2: उस टाइम पर तमक श्वास जो है वो हो जाता है. उसके अलावा जब हम सर्दियां आ जाती हैं, तो जो कफ है अगर बना है शरीर में वो लिक्विड रूप में है, और जो जब सर्दियां आई तो वो जम जाता
1: जम
2: है,
1: जाते
2: और उसके कारण और
1: जी।
2: नलियों में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये श्वसन रोग हो जाता है.
1: डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में अस्थमा का इलाज किस प्रकार किया जाता है?
2: आयुर्वेद में अस्थमा के लिए दो, हर रोग के लिए वैसे, शमन और शोधन, दो
1: जी
2: टाइप के हम इलाज बताते हैं. शमन रहता है जिसमें कि हम दवाइयों के थ्रू, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हम दो देते हैं, दवाइयां जो हम देते हैं उसके थ्रू हम उस रोग को कम करते करते ख़त्म करने की कोशिश करते हैं.
1: जी जी
2: और दूसरा होता है शोधन के थ्रू. शोधन होता है जिसमें हम जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स हैं उन सबको पूरा बाहर निकालें. जैसे
1: जी
2: अब ये कफ बन रहा है, तो इसमें तमक श्वास में इस कफ को पूरा हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, शोधन करेंगे, मतलब पूरा डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू हम पंचकर्म के थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं।
1: तो क्या आयुर्वेदिक दवाएं लंबे समय तक लेना सुरक्षित है?
2: बिल्कुल, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं इसमें बेसिकली आपके जड़ी बूटियाँ ही तो रहती हैं। अगर आप देखें तो हम जो खाना खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो उसको हम हर रोज़ खा रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, दिक्कत नहीं। तो जब हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ ही हैं, अगर हम उन्हें भी प्रॉपर गाइडेंस के अंडर लें तो उससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हो सकती, उसको लंबे टाइम तक लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कितने समय तक आयुर्वेदिक उपचार का असर दिखना शुरू हो जाता है?
2: ये आयुर्वेद के जो उपचार है, अगर तो अभी अभी नया ये रोग हुआ है तो वो बहुत जल्दी उसमें आपको 2-3 महीने में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि 6 महीने तक वो क्लियर भी हो जाए। पर अगर रोग जो है वो पुराना है, रोगी जो है वो बहुत बूढ़ा है, एज्ड है, तो उसमें क्या रहता है कि हम थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रह जाता है, तो उसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: अस्थमा मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या खान पान का ध्यान रखना चाहिए?
2: अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनको पहली बात ठंडा खाना, भारी खाना, चिकना खाना, जो इस तरीके के खाने हैं आपकी डाइजेशन को कमज़ोर करता है, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता इजीली, उस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए। उस तरीके का खाना खाना है जिससे जो कि डाइजेशन में इजी हो, डाइजेस्ट करने में आसान हो, और इस तरीके का खाना खाएं जिसको जो कि ठंडा ना करे आपके शरीर में और भारीपन ना पैदा करे। जैसे दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो श्वसन रोग है जिनको, और ठंडा फ्रिज से खाना ये सब नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ दिनचर्या भी है, जैसे आप रात के टाइम पर सही टाइम पर सोएं, अगर आप रात को लंबा जाग रहे हैं तो भी ये आपका श्वसन रोग बढ़ाएगा।
1: तो क्या गर्म पानी पीना लाभकारी रहेगा?
2: बिल्कुल, जो श्वसन रोग के रोगी हैं, जो ये तमक श्वास के रोगी हैं, उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए। उनको हम गुनगुना पानी पीने की ही सलाह देते हैं, पूरे साल भर वो पिए तो उनके लिए लाभदायक होगा।
1: डॉक्टर साहब, बच्चों में अस्थमा होने पर आयुर्वेद कितना प्रभावी है?
2: बच्चों में अगर ये हो जाता है तो आयुर्वेद बिल्कुल बहुत प्रभावी है, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी बिल्कुल उनकी डेवलपिंग स्टेज होती है और उनमें जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, रादर देन जो ओल्ड एज है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाना उतना मुश्किल है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है, बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर हम आयुर्वेद की दवाइयों के थ्रू हम चलें तो बिल्कुल इससे हम बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है।
1: तो क्या केवल घरेलू नुस्खों से अस्थमा ठीक किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, अगर ये शुरुआत का टाइम है, अभी अभी आपको तमक श्वास हुआ है, अभी अभी अगर आपको 2-3 महीने हुए हैं और आपने एलोपैथिक इलाज बहुत टाइम से शुरू नहीं किया है और अभी आप इलाज ढूंढ ही रहे हैं, उस टाइम पर अगर हम ये शुरू करते हैं तो बिल्कुल इससे हम जल्दी असर हमको दिख जाता है। अगर रोगी जो है वो बहुत पुराना है तो नेचुरली उसमें टाइम लगता है।
1: तो क्या आयुर्वेद में अस्थमा का कोई स्थायी समाधान है?
2: आयुर्वेद में वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आयुर्वेद में क्या रहता है, 3 टाइप की बीमारियां हैं, 3 टाइप से देखी जाती हैं, साध्य, असाध्य और याप्य। जो असाध्य बीमारी है वो वैसे हो गई जब ये बिल्कुल शुरुआत का टाइम है, उसमें ये साध्य है जब अभी लगी ही है बीमारी, उसमें ये बिल्कुल साध्य है, आपको 6-7 महीने में इसका बिल्कुल रिजल्ट निकल मिल जाएगा। पर अगर जो है ये बीमारी पुरानी हो चुकी है, आपको 10-12 साल हो गए हैं और आप दूसरी दवाइयों पर भी हैं, तो उस टाइम पर क्या है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर पूरी तरीके से ये क्योर नहीं होगा तो हम इसको कंट्रोल रख सकते हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ, परहेज, ये सब खान पीन और आपका जो दिनचर्या है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करके हम इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। और दूसरा, जब बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं और जो एज में भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिनका तमक श्वास बहुत पुराना है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि असाध्य भी है, उसमें क्योर नहीं हो सकेगा, पर उनमें भी हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं।
1: तो क्या अस्थमा मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं?
2: बिल्कुल, अस्थमा मरीजों को यही है कि थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने खाने का, अपने एनवायरनमेंट का। आप नेचुरली जब पॉलिनेशन का सीज़न होता है तो अस्थमा वाले मरीजों को जो है वो अटैक पड़ सकता है इजीली, तो उनको ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अगर वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो वो इसको आराम से अपनी जीवन जो है नॉर्मल दूसरे लोगों की तरीके से जी सकते हैं। अपना दिनचर्या, अपना खाना पीना जो है, और थोड़ा जो है क्लाइमेट को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग आप चलें,
1: जी,
2: तो आप बिल्कुल दूसरे लोगों के जैसे ही नॉर्मल जी सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अस्थमा मरीज को कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए?
2: अस्थमा मरीज को एक तो दिनचर्या जो है हमारे आयुर्वेद में बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपका जो दिनचर्या है उसमें आपको सुबह कितने बजे उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठें प्रातः, और रात को सोने का टाइम आपका एक फिक्स्ड होना चाहिए, आपका खाना खाने का टाइम तीनों टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, आपको पानी बीच में बहुत बार जो है थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके दिन भर में पीते रहना चाहिए। अगर हम इस तरीके के ये कुछ पॉइंट्स जो हैं रोज़ के उसमें अपनी दिनचर्या में फॉलो करेंगे तो हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं।
1: तो क्या शहद, अदरक, तुलसी जैसी चीजें इसमें उपयोगी हैं?
2: बिल्कुल, शहद और अदरक का जूस जो है वो इसमें बहुत उपयोगी है। इवन इसके साथ हम एक वासा करके आता है, वो जो है वो श्वसन नलिकाओं को इम्प्रूव करता है, और आपकी जो काली मिर्च हो गई वो भी इसमें उपयोगी मानी गई है। तो बिल्कुल है, ये अदरक और शहद जो है वो, तुलसी जो है वो बिल्कुल बहुत वो लाभकारी है।
1: डॉक्टर साहब, आपकी एक ऐसी सलाह जो अस्थमा मरीज के लिए जरूरी हो?
2: अस्थमा मरीज के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो है रूटीन, डेली रूटीन ठीक रखें उस, और पाचन तंत्र को बिल्कुल कम से कम आप स्ट्रेस में डालें, मतलब कि आप अपना खान पान ठीक रखें तो आपका पाचन सही रहे। तो अगर आपका डाइजेशन पूरा अच्छे से हो रहा है तो बिल्कुल ये श्वसन रोग जो जिनको है उनके लिए इजी हो जाएगी लाइफ।
1: डॉक्टर साहब, जाते जाते अगर विश्व अस्थमा दिवस पर आप अस्थमा मरीजों के लिए क्या मुख्य संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं हमारे मरीजों के लिए मेनली यही देना चाहूँगी, जीवन शैली की जो एक संकल्प लेना चाहिए लोगों को कि अपने जीवन शैली में हम प्रकृति के करीब रहेंगे, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करें और नेचुरल दवाइयाँ जो हैं उनको लें और सही आहार अपनाएं, और जो भी आप दवाइयाँ लें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, चाहे छोटी सी है पर अगर जो भी दवाइयाँ आप लें एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, आप अपने आप ओवर द काउंटर मत ड्रग्स ट्राई करें।
1: और घरेलू नुस्खों के बारे में क्या कहना?
2: घरेलू नुस्खों में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें, क्योंकि कई बार हम एक जगह से बात सुनते दूसरी जगह से बात सुनते तो जरूरी नहीं है कि सारी ठीक हो
1: जी।
2: तो आप जो भी घरेलू नुस्खा भी अपनाना चाह रहे हैं तो उसमें अगर आप एक अपने जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनसे अगर आप सलाह कर लें तो ज्यादा बेटर है।
1: डॉक्टर गीतांजलि, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:52 और 6 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

हम संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ गीत हम साथ साथ है। फिल्म का ये गीत है, गीत में संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की मिलीजुली आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गीत। गीत की धुन बनाई है नुसरत फतेह अली खान ने।

इस गीत को गाया था हरि हरण और अलका याग्निक ने, और फिल्म थी जुदाई। अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन, फिल्म है हिना।

हिना फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है हिमाचली गीत और लोकगीतों का कार्यक्रम।

हिमाचली गीत और लोकगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाजिर है आप सभी की रेडियो दोस्त हिमाचली गीत और लोकगीत लेकर।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम में अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश व साथियों की आवाज में यह लोकगीत।

0: एक भाई अपने साथियों के साथ अपनी बहन के घर से गुजरता है।
1: हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
0: कहना न मानकर कैसे और क्या टाल मटोल करता है, इस गीत में दोनों भाई बहन के संवादों का चित्रण है।

कर्नेल राणा की आवाज में ये लोकगीत हमारे श्रोताओं ने सुना। हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को हैं कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के अंतर्गत शमशर गोगरा सड़क मार्ग पर कल एक वाहन के चीड़ के पेड़ की चपेट में आने से ये अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। प्राप्त सूचना के अनुसार हादसे के समय वाहन में चालक सहित कुल सात लोग सवार थे, जिनमें छह स्कूल अध्यापिकाएं शामिल थीं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: इस भीषण दुर्घटना में चार अध्यापिकाओं की मौके पर ही दुखद

0: राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की अंतरिम राहत राशि प्रदान की गई है, जबकि घायलों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि मौके पर प्रदान की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये घटना बेहद हृदय विदारक है और पूरे समुदाय के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। भारत आ रहे मार्शल आइलैंड्स ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 40,313 मीट्रिक टन एलपीजी और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से बारिश हो रही है। धर्मशाला, मंडी तथा ऊना में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा का समाचार है। कुल्लू तथा चंबा में बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में कल भी कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों व फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
2: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए कल 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 5 मई तक रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलों के साथ बारिश होगी। ऊंचाई वाले इलाके लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आप और हम। आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष

कार्यक्रम आप और हम में आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं। ईमेल पता है dharmshalaakashwani@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़ है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: श्रोताओ, आप और हम जो सजीव फोन-इन कार्यक्रम हम महीने के पहले रविवार को पेश करते थे, आचार संहिता के कारण इस सजीव फोन-इन कार्यक्रम आप और हम में हम सीधे तौर पर आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन श्रोताओं के मनोरंजन के लिए आज हम पेश कर रहे हैं फिल्म संगीत। तो आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

इंदु जैन का लिखा हुआ गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हिमांती शुक्ला और केजे येसुदास ने इस गीत को गाया था। फिल्म थी चश्मे बद्दूर। श्रोताओं, आचार संहिता लागू होने के कारण आज आप सजीव फोन इन कार्यक्रम आप और हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

आरडी बर्मन के संगीत से सजे लता मंगेशकर के गाए हर जाए फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं, आइए अब सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आक्रमण फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिलीजुली आवाजों में।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों का गाया हुआ गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म है राम बलराम।

मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के गाए आशा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सोनू निगम और साथियों के गाए बॉर्डर टू फिल्म के गीत के साथ। मिथुन का संगीत है और बोल लिखे हैं मनोज मुंतासिर ने।

सैनिक भाइयों, जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत सुनिए। जतिन ललित का संगीत है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत है और इसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने।

सैनिक भाइयों, ये है आशिकी फिल्म का गीत। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल हैं, गायक कलाकार हैं कुमार सानू।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में ये है जमाना दीवाना फिल्म का गीत, संगीतकार नदीम श्रवण।

उदित नारायण और साथियों के गाए चलते चलते फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर है स्टूडियो में नई बातों, नई जानकारियों और एक नए विषय के साथ। तो सबसे पहले सभी बच्चों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और रेडियो दीदी की तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्ते, ढेर सारा लाड प्यार और दुलार। दिल की गहराइयों से अभिनंदन, आभार हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो आज के इस सफर के हम सफर बन गए हैं। आप सभी को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये चंद पंक्तियां हमारे सभी श्रोताओं के लिए। चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। जी हाँ नन्ही दोस्तों, आज हम सब मना रहे हैं विश्व हास्य दिवस। मई महीने के पहले रविवार को पूरे विश्व में हास्य दिवस यानी हंसने का दिन मनाया जाता है। सुनकर थोड़ा अजीब आपको जरूर लग रहा होगा कि दीदी भी हर रविवार को पता नहीं कौन सी जानकारियां देती है और कहां से ढूंढ ढूंढ कर लाती है। तो आपको हमने बता दिया ना कि आज हम सब यानी पूरा विश्व मना रहा है विश्व हास्य दिवस यानी हंसने का दिन। नन्ही दोस्तों, आज की जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, जिस तरह का जीवन हम सब जी रहे हैं ना, तो आज किस जिंदगी में हंसने का क्या महत्व है, वो भी खुल कर हंसने का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और खुलकर हंसना हमारे जिंदगी में अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, यही तो आज का दिन उजागर करता है। इसी बात पर आज का दिन और आज के दिन को मनाने का उद्देश्य है कि खुलकर हंसना कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो बच्चों, इस दिन पर, इस विषय पर हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। जी हाँ, बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे कि हंसना क्यों ज़रूरी है और हंसने का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या भूमिका है। इस पर हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन जानकारियों से पहले एक ना खूबसूरत सा प्यारा सा गीत हमने पहुंचा दिया है अपने नन्हे दोस्तों तक। तो इस गीत को सुनिए, एंजॉय कीजिए और हाँ, फिर उसके बाद आपने कहीं जाना नहीं है, लौट कर आना है हमारे पास।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी हाँ नन्हे दोस्तों, हास्य दिवस की हम बात कर रहे हैं। नन्हे दोस्तों, हंसी के महत्व को उजागर करना और आम जन को ये संदेश देना कि हंसी न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि हंसने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। नन्हे दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि विश्व हास्य दिवस की शुरुआत सन 1958 में डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी, जो लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक हैं। और हाँ बच्चों, उनका मानना ये था कि जब हम दिल खोल कर हंसते हैं तो हमारा मन ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है। बच्चों, आज हर दूसरा आदमी इतने तनाव में है और अगर उनसे पूछा जाए कि आप पिछली बार कब खुलकर हंसे ना, तो थोड़ा सा वो विचार करेंगे। हाँ, ये सही बात है। हमसे भी अगर कोई ये पूछे ना कि आप लास्ट टाइम कब बहुत खुलकर हंसे थे, दिल से हंसे थे, तो हम भी कुछ सेकंड सोच के लिए ज़रूर बैठेंगे कि हाँ भाई, हम लास्ट टाइम कब खुलकर हंसे थे, कब दिल से हम हंसे थे। तो ये वाकई सोचने वाली बात है बच्चों। आज की जिस तरह की जीवन शैली है ना, वो बहुत व्यस्तता से भरी हुई है, तनाव से भरी हुई है ना। बड़े तो बड़े, हमारे छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। उनको भी बहुत सारा प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है ना। कहीं पर कोई कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं, उसका तनाव है। तो कभी परीक्षाओं का तनाव होता है, कोई टेस्ट है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसका तनाव है। कभी ही अचानक कोई सरप्राइज टेस्ट या पीटीएम रख दी, तो वो भी बच्चों को तनाव देती है कि हमें तो पहले पता ही नहीं था, अब मम्मा वहाँ पर जाकर न जाने कौन सा बम फोड़ेंगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो सबकी ज़िंदगी में तनाव भी क्रिएट करती हैं और थोड़ा सा टेंशन में भी सभी को ला देती हैं। वैसे बच्चों, हंसने के लिए कोई रुपया पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ता है। फिर भी न जाने हमारी दिनचर्या से ये खूबसूरत से पल, ये खूबसूरत सी हंसी क्यों गायब हो चुकी है ना। हंसी दिवस हंसने की कला और लोगों को फिर से जीवंत और स्वस्थ करने की क्षमता को समर्पित होता है। आज का दिन समर्पित है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हंसने और हंसी के महत्व पर विचार करने के लिए। जो व्यक्ति हंसी के साथ साथ मन और अच्छी लगन से कार्य को करता है ना, वह उस काम को भी बहुत अच्छे से करता है और अपना जीवन भी वो अच्छे से जीता है, व्यतीत करता है। और सच में बच्चों, इस बात में कोई दोराहा नहीं है बल्कि सच्चाई है। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, चाहे हम किसी भी काम में हमें लगा दो, हम उस काम को बड़े दिल से करते हैं है ना, और उस काम में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस इस काम को करके ही हम अच्छे से सांस लेंगे। तो ये बात होती है कि जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारा दिल खुश होता है या हमारे आसपास कोई चिंता कोई तनाव नहीं होता है, तो हम खुलकर हंस सकते हैं। और एक अंदर से जो खुशी वाली बात आती है ना, वो छलकती है हमारे काम में, हमारी लगन में, हमारी मेहनत में। तो नन्हे दोस्तों, हंसने से ना कई सारी बीमारियां और तनाव कोसों दूर हो जाता है। तो फिर जाता क्या है, हंसते रहो ना। पर हाँ, बेवजह कभी हंसना नहीं है, क्योंकि हमें सामने वाले की भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। हंसना है, जब हंसने वाली बात हो तो खुलकर हंसो। पर हाँ, कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाने का भरसक प्रयत्न करो, चाहे उसके लिए आपको झूठी हंसी का ही सहारा लेना पड़े, पर वो सहारा आपने लेना ज़रूर है। चलिए, अपनी बातों को आपकी दीदी यही पर विराम दे रही है और पहुंचा रही है आप तक एक और प्यारा सा गीत।

चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकडदुम चिकिचकचो।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दीदी प्रवीण के साथ। बात हम कर रहे हैं विश्व हास्य दिवस की। बच्चों, आपको एक बात बताऊं, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि अधिक हंसने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और हंसने से सेहत भी बनी रहती है। तो अब आपने ये डिसाइड करना है, ये तय करना है कि आपको ऐसे ही चुप बैठे रहना है या फिर हंसने की कला को अपनाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास तेज दिमाग हो, आप बुद्धिमान बने, तो भाई हंसने की कला को अपना लीजिए। वैसे भी जो चुप बैठे रहते हैं ना, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और बच्चों, हंसने से हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, निखार आता है। बच्चों, हंसने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन बनता है, जो शरीर के भीतर प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करता है, यानी हमारे शरीर के दर्द को खत्म करता है। बच्चों, जब हम हंसते हैं ना, तो टी कोशिकाओं को जीवन मिल जाता है। इससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की बहुत सारी ताकत मिलती है। हंसना हमारे प्यारे से हृदय के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और बच्चों, हंसना एक असाधारण कार्डियो कसरत भी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी अन्य कारण से, जी हाँ, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो वो हंसने की आर्ट को, इस कला को अपना सकते हैं। इससे हमारा दिल पंप करेगा। और हम आपको ये भी बता दें बच्चों कि मानव शरीर के पेट और छाती के बीच में एक डायफ्राम होता है, जो हंसते समय धुक धुकी का कार्य करता है। इससे हमारे पेट, फेफड़े और यकृत की मालिश हो जाती है। बच्चों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हंसना एक मानवीय लक्षण है और इस सृष्टि का कोई भी जीवधारी हंसता नहीं है, लेकिन एकमात्र हम मनुष्य ही हैं। भगवान ने ये कला सिर्फ मनुष्य को दी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन जीने का एक छोटा सा मंत्र है, हमेशा आपने हंसते रहना है। चाहे फिर आप कोई काम कर रहे हो तो हंसते रहो, काम को करते रहो। आप कहीं चल रहे हैं तो कोई अच्छी सी पलों को याद करो और चलते रहो, सफर का आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ रहे हैं तो टीचर की कोई अच्छी सी बात याद करो और पढ़ाई करते रहो, बहुत जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, आप स्वयं को दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान मानेंगे जब आप छोटी छोटी बातों को याद करके हंसते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटी छोटी बातों पर जिंदगी से गिले शिकवे करना छोड़ दीजिए, अपनों से रूठना छोड़ दीजिए। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है बच्चों, इसे खुल कर जियो, जिंदा दिली से जियो। तो विश्व हास्य दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसो, जोर से हंसो। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव में, पहुंचाते हैं अपने नन्हे दोस्तों तक यही जानकारियां, यानी रोचक जानकारियां। बच्चों, मुस्कुराने के लिए सिर्फ 17 मांसपेशियों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो उसके लिए 43 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। तो भाई सोचो, आपने अपने जो 17 मसल हैं उनका यूज़ करना है या फिर 43 मसल का आपने यूज़ करना है, ये आप, जी हाँ, डिसाइड करेंगे। हंसने के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को जेलोटोलॉजी कहा जाता है। और बच्चों, 10 से 15 मिनट की ज़ोरदार हंसी 40 कैलोरी तक जला सकती है। डर से हमारी किडनी कमज़ोर होती है, तनाव से दिल और दिमाग दोनों कमज़ोर होते हैं, आँख खोलकर छींकना लगभग नामुमकिन होता है। तो कभी भी जब आपको छींक आए ना, तो आँख खोलकर छींक मारने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो एक बार फिर से जिस विषय पर हमने आज आपके साथ इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें की, इतनी अच्छी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई, आपने इन सभी के बारे में ज़रूर सोचना है, समझना है। और अगर दीदी की कोई बात आपको अच्छी लगी हो ना, तो थोड़ा थोड़ा आपने मुस्कुराना भी है। चलिए सुनते हैं चलते चलते एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो चलने से पहले हम अपने नन्हे दोस्तों को बता देते हैं आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे जितेंद्र सिंह पाल और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे सुरेंद्र कपूर। अब इसी के साथ अपनी रेडियो दीदी प्रवीण को दिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति, वादा करते हैं आपसे कि अगले रविवार को फिर होगी आपसे एक और प्यारे से नई सी मुलाकात, नई बातों और नई जानकारियों के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2000।

0: साइट से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG for admission to undergraduate medical education will be held today. The examination will begin at 2 in the afternoon and will conclude at 5 p.m. Indian students in the UAE are appearing for National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 today, with examination centers open in both Dubai and Sharjah. The pen and paper test conducted by the National Testing Agency has been held from 12:30 p.m. to 3:30 p.m. UAE time. The Indian High School in Dubai and Sharjah Indian School in Sharjah are serving as the designated examination centers. The examination has been overseen by the Consulate General of India in Dubai. A massive fire today claimed 9 lives in Vivek Bihar area of the national capital. The Delhi Fire Services said they received information about the fire incident early this morning, following which 14 fire tenders were rushed to the spot to douse the flames. The department informed that the fire was brought under control by 6:25 a.m. Lieutenant Governor of Delhi, Taranjit Singh Sandhu, and Chief Minister Rekha Gupta have expressed grief over the loss of lives in the tragic fire accident in Vivek Bihar this morning. Iran's Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei has reacted to U.S. President Donald Trump's remarks that called the U.S. seizure of Iranian vessels piracy. Baghaei, in a social media post, said it was a direct and damning admission of a criminal nature of their actions against international maritime navigation. Baghaei called on the international community, UN member states and the UN Secretary General to firmly reject any normalization of such blatant violations of international law. Trump had bragged that the U.S. Navy acted like pirates in its blockade of Iranian ports. Trump, at an event in Florida, said they took over the ship, the cargo, the oil, and it was very profitable business. Amid the ongoing West Asia conflict, OPEC plus countries have agreed in principle to raise oil output targets in June. Reports say the 7 OPEC plus countries have agreed to raise oil output targets by about 1,80,000 barrels per day next month. This will be the third consecutive monthly increase amid geopolitical crisis and the departure of the United Arab Emirates UAE from the group. With the UAE leaving, OPEC Plus includes 21 members, including Iran. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर. दिन के 1:10 हुए हैं. अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे.
2: हमारे एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे. तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए. वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है. कुछ तो परिवर्तन हर जगह जरूरी होता है. हम अपनी जिंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना. तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं. एक साथ ही लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है. शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइड की बातें लिखी हैं. और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है. मैं लिख रहा हूँ. सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता. आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदें बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल. लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदें आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम. वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. और साथी एक लिखते हैं कि सुहाने सफ़र को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे, और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी. और अभी तपती गर्मी, हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदें बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती हैं. रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं. और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी, ठंडी, हवा, धूप, छांव, रिमझिम बारिश, कतरा कतरा पानी, मौसम वगैरह वगैरह। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की जरूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है। फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना। तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल में लिख रही थी, फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है। एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए, सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है। विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं। विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं, तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों, आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफ़र एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल ज़रूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें, सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है। तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं, भाई हवाएं ना होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं, दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है, आपके साथ सुरीला सफर की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं कि तपती गर्मी में सावन का इंतजार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं, इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिमझिम गिरे सावन। साथियों, रिमझिम बारिश की बूंदें, सोंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज़ हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए ज़रा इस गाने के संगीतकार का नाम।

भाई मंजिल फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज़ में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज़ में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना अमित ताब बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी इस गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा रिमझिम सावन इंतजार पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर ये तो ज़रूर कहूँगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों ना हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतज़ार है। भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं ये, इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद, तो चलिए फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतज़ार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं, कभी तपती धूप में छांव का एहसास तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतजार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कड़ी कड़ी, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं कि लगभग भारत के बड़े हिस्से में मानसून जैसे मौसम लग रहा है, कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश और काली घटाएं छा रही हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो पर बहुत राहत है, ऐसे मौसम में आपसे एक बारिश वाला गीत सुनना चाहूँगा। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में हम सबको खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सावन तो अभी दूर है लेकिन हमें इंतजार है कि रिमझिम बारिश ही हो जाए और इस धूप और गर्मी में थोड़ी निजात मिल जाए। आज का सुरीला सफर और भी सुरीला होने वाला है भाई, सावन दूर है तो क्या हुआ, गीतों के जरिए तो हम सावन के करीब जा सकते हैं ना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आरडी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियाँ लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदें मोती बनकर चेहरे पर चमक दिखाती हैं, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है, गर्मी की ये तपती बेला सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने। गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फ़ायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है, मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। ये सच में साथियों बहुत ज़रूरी है ऐसे में पानी का बचाव भी करना, और जहाँ तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है और वो अमृत के समान होती है। तो चलिए अब आपका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आने वाला है और हम उस गाने की ओर बढ़ेंगे जिसमें अभिनेत्री रेखा के बड़े ही सहज अंदाज हैं। अब बताना आपको है कि इस गाने में उनके साथ अभिनेता कौन है।

खतरा खतरा मिलती है, आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं, श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है, जन जन को राहत पहुँचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथ ही लिखते हैं हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाज़त फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशीली दिलकश अमर आवाज़, आदरणीय आशा ताई की। तो एक साथी ने लिखा है आज का सुरीला सफ़र का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है, अभी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुन कर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है, तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हज़ारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं, परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद ज़रूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहाँ धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों, बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है, वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं, लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जमा रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

कभी धूप कभी छांव लिए ये मौसम भी कभी कभी बेईमान हो जाता है। बहरहाल मोहम्मद रफी की आवाज लोफर फिल्म का गाना सुना आपने और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई, एक साथी लिखते हैं, लो आ गया मेरी पसंद के चुने हुए गानों का आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो एक साथी लिखते हैं, मौसम कोई भी हो, सुरीला सफ़र चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे साथी ने लिखा है, आज के सुरीले सफ़र के कार्यक्रम के गीतों से कोटा राजस्थान में भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है, क्या बात है। तो यही तो होता है मुलाकातों का असर। एक साथी लिखते हैं, विविध भारती मेरे बचपन का साथी, विविध भारती मेरे वर्तमान समय का साथी, और जब तक प्रभु परमेश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं, विविध भारती मेरा साथी रहेगा। एक साथी लिखते हैं कि मैं थोड़ा कोचिंग क्लास में लेती हूँ, इसलिए मैं गीतमाला में नहीं जुड़ पाई। आज संडे है, पिछले रविवार शादी में गए थे और प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, लेकिन साथ तो है फेसबुक के जरिए। बस इस सफ़र में ना जुड़ पाऊँ, मगर फेसबुक से रेडियो जुड़े रखना मैम, क्योंकि आपके प्रोग्राम से जुड़कर ऐसा लगता है हम आपके साथ ही बैठे हैं और हम रेडियो चैनल और ऑफिस में ही बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है विविध भारती के साथ जुड़ने में। वाह, तो ऐसे ही विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अरे वाह, प्लेलिस्ट में से चौथा गीत भी बज गया, आज मौसम बड़ा बेईमान, क्या बात है। भाई हमारी आपकी तो ये जो पसंद है वो मिल गई। एक साथी लिखती हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर, मन स्वर सुनकर मन शांत हो गया, मेरे श्रोता मित्रों की मीठी कमेंट्स मन को सुकून दे रहा है। आज मैं कुछ गुस्से में थी और अब सब ठीक हो गया है, फिर पहले की तरह आनंद लेकर गाना सुन रही हूँ। पॉजिटिव थॉट्स जीवन को जिंदगी से भर देते हैं। तो भाई गुस्सा क्यों, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्से को एक साइड में कीजिए और मुस्कुराते रहिए। लीजिए भाई, हमारे एक साथी ने लिखा है कि अरे वाह, मेरा कतरा कतरा पानी गीत भी मैच कर गया। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि इजाज़त फिल्म का जो गीत बजा कि मेरा तीसरा गीत भी आपने शामिल कर दिया, अब स्कोर 5 गीतों पे मेरा तीसरा गीत बज गया है, क्या बात है भाई। तो दूसरे साथी ने लिखा है, गुलजार साहब ने इस गीत को एक पेंटिंग जैसा फिल्मांकन किया है। तो दूसरे साथी लिखते हैं, कतरा कतरा जिंदगी प्यासी प्यासी रहने दो, मौसम का अद्भुत संगम लिए ये गीत सुरीला सफ़र को और भी सुरीला बना रहा है, और साथ ही साथियों आपके कॉमेंट्स तो इसे सुरीला बना रहे हैं। तो भाई यही तो असर है विविध भारती के साथ मुलाकातों का। तो आप तो विविध भारती के साथ रोज ही मुलाकात करते हैं, हर दिन आपका खास होता है मुलाकात का विविध भारती के साथ। वैसे आपकी जिंदगी के सुरीले सफर की कोई एक मुलाकात जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार रही हो, शेयर करना चाहेंगे?

एक साथ ही लिखते हैं, विविध भारती सुन सुन कर ही हम बड़े हुए हैं। आज भी सुबह से शाम तक हमारा FM चालू रहता है। आसपास कोई नहीं है, बस विविध भारती और मैं।

एक साथी लिखते हैं कि पेड़ों की छांव का कोई मोल नहीं, कई तपस्वी भी इनकी छाया में मोक्ष पा गए। दिव्यता का स्रोत है ये पेड़, सिर्फ तन की ही नहीं मन की थकन को भी हर लेते हैं ये पेड़।

तो ये मुलाकातें विविध भारती पर यूं ही होती रहें, हम और आप हमेशा विविध भारती के साथ जुड़े रहें। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का आज का सफ़र बस यहीं तक। मैं शिफाली आपसे अब लूंगी इजाज़त, ढेर सारे धन्यवाद के साथ। आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को, अपने इस कार्यक्रम के सफ़र को और भी दिलकश खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।

नमस्कार साथियों, जिंदगी में भागदौड़ और तनाव इतना बढ़ गया है कि इस बीच हम भूल ही जाते हैं कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुलकर हंसना क्या होता है ये भूल ही जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे मन को हल्का कर देती है। दोस्तों के साथ की गई मस्ती, परिवार के साथ बिताए हल्के फुल्के पल और छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कोशिश कीजिए कि आप खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करें।

0: हंसते हंसते रोना।
1: इस दुनिया में हर इंसान रोते हुए ही आता है, लेकिन असली मायने उस जिंदगी के हैं जो मुस्कुराते हुए जी जाएं और हंसते हुए विदा हो जाएं। जीवन में मुश्किलें, दर्द और संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, पर जो इंसान हर हाल में मुस्कान बनाए रखता है वही सच में जीना जानता है। हंसी सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि जीने का नजरिया है जो खुद को भी सुकून देता है और दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी पहचान हमारी मुस्कान से हो।

जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बस कभी कभी हम उसे बहुत ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें मुस्कुराने की वजह दे सकता है। कभी किसी की बात, कभी कोई याद, तो कभी एक सुकून भरा पल। असली मजा तो इसी में है कि हम इन छोटे छोटे पलों को महसूस करें और दिल से जिएं। तो एक छोटा सा संदेश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बनाती है बल्कि किसी और के चेहरे पर भी खुशी ला सकती है ना?

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है।

0: स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यानम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। डीएमके और टीवीके ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक

0: दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया कि विविध भारती पर अब शुरू होने वाला है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: चोरी चोरी फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर शैलेंद्र की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, जब ऐसा साथ हो दो दिलों का तो हसीन वादियां भी मुस्कुरा उठती हैं।

सूरत है भोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं

कली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिलनशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं।

लाल बंगला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, उषा खन्ना का संगीत। साथियों, ऐसा खूबसूरत साथ जिसे देखकर कुदरत भी मुस्कुरा दे, तो फिर प्यार तो होना ही था। महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का गाना।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977, दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981, बसेरा।
4: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984, दुनिया।
5: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993, फिल्म साहिबा।
6: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
7: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के। 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

ये सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी? कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, पहली ही नज़र में हम दिल हार बैठे।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम के समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच कल 4 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 269 जबकि मंडी जिले में 214 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापिस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज की नीट परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने सहित विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय पत्रकारिता ने हमेशा समय की चुनौतियों के बीच खड़े होकर

0: कुल्लू जिले में बंजार और राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए जा रहे पैचवर्क और टॉरिंग कार्य के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। बंजार के उपमंडल अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि ये निर्णय जन सुरक्षा और सड़क मुरम्मत कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने तक ये मार्ग रोजाना दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक यातायात के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवा वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि कार्य तय समय में पूरा किया जा सके। कुल्लू पीपुल्स एसोसिएशन शिमला ने कल कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में हुई दुर्घटना जिसमें 4 अध्यापिकाओं की मृत्यु हो गई थी पर गहरा शोक प्रकट किया है। एसोसिएशन ने शिमला से जारी एक शोक संदेश में कहा है कि ये क्षति पूरे जिले के लिए दुख की घड़ी है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए भगवान से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सामायिक चर्चा। विषय है भारत के बदलते कार्यबल को सशक्त बनाती महिलाएं। वाचक स्वर है अनुराग पराशर का।
0: कुछ वक्त पहले तक भारत में महिलाओं के ज्यादातर काम अनदेखे ही रहते थे। उनके कामों का ज्यादातर हिस्सा घरों, पारिवारिक उद्यमों और अनौपचारिक भूमिकाओं तक ही सीमित था, जिनका आधिकारिक दस्तावेजों में शायद ही कभी जिक्र दिखता था। उनका योगदान तो निरंतर था लेकिन उन्हें मिलने वाली मान्यता सीमित थी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और देश के श्रम परिदृश्य को नया रूप दे रही है। ये बदलाव आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला श्रम बल भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2025 में 40% हो गई है। इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है ग्रामीण भारत, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि महिलाएं काम से किस तरह जुड़ती हैं। महिलाएं आज न केवल कभी कभार योगदान देने वाली के रूप में बल्कि निरंतर आर्थिक भागीदार के रूप में उभर सामने आ रही है। यह वृद्धि रोजगार के अवसरों के व्यापक विस्तार और श्रम बाजार में औपचारिकीकरण की और निरंतर प्रगति को भी दर्शाती है। लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही बयां करते हैं। गांव और छोटे कस्बों में महिलाएं अभूतपूर्व पैमाने पर पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया है। वित्तीय समावेशन के मार्ग के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास धीरे धीरे सूक्ष्म उद्यमों के एक नेटवर्क में तब्दील हो गया है, जहां महिलाएं उत्पादन, प्रबंधन और बिक्री कर रही हैं और अक्सर अपने परिवारों में प्राथमिक आय का स्रोत बन रही हैं। महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए नए सिरे से शुरू किए गए नीतिगत प्रयासों से इस रफ्तार में और तेजी आई है। लखपति दीदी कार्यक्रम जैसे पहल स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को अपनी आय को स्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है, जिसका मकसद प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली करोड़ों महिला उद्यमियों का सृजन करना है। ऋण, कौशल और बाजार संपर्कों तक विस्तारित पहुंच के साथ ये भागीदारी से आय सुरक्षा की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जहां महिलाएं न केवल काम कर रही हैं बल्कि अधिक मजबूत आजीविका का निर्माण भी कर रही हैं। अदृश्य श्रम से दृश्य उद्यम की ओर यह बदलाव खामोशी के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रहा है। उद्यमिता में यह बदलाव भारत की बढ़ती स्टार्टअप व्यवस्था में भी दिखाई देता है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है, जहां 2.2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 23.3 लाख से अधिक रोजगार सृजित कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 1 लाख से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो नवाचार संचालित क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाती है। बेहतर वित्त पोषण, इनक्यूबेशन सहायता और अधिक अनुकूल नीतिगत वातावरण के साथ महिलाएं तेजी से नेतृत्व की भूमिकाओं में कदम रख रही है, जो भारत की नई अर्थव्यवस्था में भागीदारी से

0: उद्यमिता की ओर एक बदलाव का संकेत है। इसके साथ ही कौशल तक आसान पहुंच भी नए रास्ते खोल रही है। स्किल इंडिया मिशन और अन्य सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के मदद से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों से जुड़े कौशल से लैस किया जा रहा है। उद्योगों पर आधारित कौशल विकास पर यह बढ़ता जोर रोजगार क्षमता में सुधार करने और अधिक स्थिर और उत्पादक आजीविका की ओर बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ,

0: तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
3: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: हम वफा करके भी तन्हा रह गए, निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज़। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी, और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए। इसे पसंद किया था ज़िला वाशिम वनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े ही रह गए, बैठिए ना। मेयर साहब
2: जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूं ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
3: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
2: तुम ठीक कहते हो
4: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं। हाँ, कहिए कहिए।
4: नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
4: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ, देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
4: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
5: हुजूर ने मुझे याद किया।
1: हाँ बिल्ला,
5: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बचा?
4: हाँ जी, आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
5: जी बहुत अच्छा।
4: हाँ हुजूर, आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना
4: जी?
1: आपका मतलब?
4: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आपकी खुशी। डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
5: जी बहुत।
4: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
4: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी।
1: डॉबचिंस्की, ये लो,
4: चलिए।
1: हुजूर, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
4: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
6: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
7: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
6: मारिया तू चुप रह।
3: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी,
6: ये लाओ मुझे तो
3: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
6: मिश्का मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी, अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
3: लो, वो लोग आ गए।
1: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते
4: हैं।
1: दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
4: अजी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
1: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
2: जी जी हाँ श्रीमान,
1: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयां खाली थी, मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
2: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
4: हुजूर, मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
1: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुखी सच्चा सुख है।
4: जी, जी, जी, जी।
1: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
3: देखा डॉबचिंस्की,
8: इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी है।
1: मेयर साहब
4: जी,
1: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
4: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं भी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
1: अब साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
9: बड़े लोगों के बड़े शौक।
4: अरे इधर आ, इधर। ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया।
1: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
6: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए।
1: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
6: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
1: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ।
2: जी,
1: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है, बताइए बताइए बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
6: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
1: नहीं।
6: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
1: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
6: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
1: नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
6: अच्छा।
1: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
6: काश हम जा पाते।
1: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है? हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ 700 रूबल।
9: 700 रूबल?
1: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरड डरड डरड डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
9: जी।
1: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया।
9: ओहो,
1: मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत। हाँ, जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते।
5: हुजूर,
1: क्या हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
4: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
1: आराम
4: जी
1: आराम। खैर, आराम ही करते हैं। साहिबान साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था।
6: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
7: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
10: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेंचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है, इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
6: देखो जनरल साहब का नौकर आ रहा है। आसिफ आसिफ
11: जी,
6: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
11: जी हाँ।
10: अच्छा आसिफ साहब को क्या क्या बातें पसंद हैं? मेरा मतलब है, वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
7: आसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
10: ओ, तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं? भागो यहाँ से तुम दोनों,
6: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
11: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
10: अच्छा।
11: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
10: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
11: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
10: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी?
11: जी हाँ जी हाँ, खूब सोया।
10: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है? खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती।
11: आपकी
10: तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
11: अच्छा मैं जरा देखा हूँ, कहीं मालिक जाग ना गए।
10: जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
2: कुछ फरमा रहे थे
12: भाई? मेरा ख्याल ये है, ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें। इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
2: ठीक है ठीक है।
12: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी,
12: आप इधर आ जाइए।
2: जी
12: हेल्थ अफसर साहब, आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ।
2: बहुत अच्छा।
3: और हम,
12: हमारा क्या होगा?
3: हमारा क्या होगा?
12: मिस्टर बॉब डॉब, आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े ही हैं।
2: जज साहब, मेरा एक सुझाव है
12: जी,
2: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
12: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा? कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
13: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें, साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
2: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
12: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
2: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
12: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा
2: है। बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
12: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
2: जी।
1: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन आसिफ प्यारे मजा आ गया। दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
12: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
1: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
12: अच्छा,
1: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
12: अच्छा,
1: कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर
12: हूँ।
1: आइए तशरीफ लाइए। आसिफ तुम जाओ।
12: मैं इस डिस्ट्रिक्ट का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ।
1: बैठे बैठे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है?
12: हुजूर, ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और
1: अरे मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है?
12: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है?
1: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
12: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
1: ये देखिए कितने सारे नोट हैं। अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
12: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
1: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
12: बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमूल समय खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
12: अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं।
1: बेचारा 400 रूबल दे गया।
2: श्रीमान मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता हूँ?
1: हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है,
2: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
1: कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं?
2: जी है।
1: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
2: जी
1: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया, और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है
2: जी। हो हुजूर, अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
1: ठीक है ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझिए
2: जी। मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
2: जी?
1: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए
2: जी। मेरा नाम जिमलानिका है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
1: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानिका, मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
2: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए, मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका ना कोई ईमान है ना चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
1: कर दिया। मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
2: जरूर।
1: देखिए यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
2: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूँगा।
1: जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
14: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
15: श्रीमान मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
2: जमींदार?
1: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए आपके पास कुछ पैसे होंगे?
14: पैसे?
1: हाँ, अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
14: विश्वास कीजिए मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
15: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ।
1: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
14: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 हैं।
15: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
14: अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
1: अरे अरे आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ आप लोग यहाँ किसी काम से?
14: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं।
15: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
1: इसमें क्या है, मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, बल्कि कई बार कह दूंगा, कहीं से कह दूंगा।
14: धन्यवाद श्रीमान।
1: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ।
11: मालिक मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
1: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
11: बहुत अच्छा मालिक।
1: अरे सुनाओ से
11: जी,
1: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
11: बहुत अच्छा।
1: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
11: बहुत अच्छा
1: अच्छा अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
11: बहुत अच्छा।
1: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को, मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
11: लाइए। सर
1: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
7: मैं आ सकती हूँ?
1: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया,
16: मैं आपकी ही राह देख रहा था।
7: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
16: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध-बुध भूल जाता हूँ।
7: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
16: क्यों नहीं, काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
7: प्यार? वो क्या होता है?
16: ये भी जान जाएंगी। मेरे मेरे नजदीक आइए।
7: हम सीधे साधे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए।
17: मारिया, तू यहाँ? ये क्या बदतमीजी है?
16: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
17: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
7: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
16: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
18: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
17: इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
18: मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा। ये तो शुरू से ही मूढ़मती रही
16: पर है। ये सच कह रही हैं। मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
18: हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
16: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
18: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से। इंस्पेक्टर जनरल से? ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
19: हुजूर, गाड़ी तैयार है।
16: हम अभी आते हैं।
18: क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
16: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
18: ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो?
16: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
18: सेवा में कितना पेश कर दूं?
16: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
18: ये लीजिए, एकदम नए नोट हैं।
16: नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
7: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
16: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
18: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
16: शुक्रिया,
18: शुक्रिया। एना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
17: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
18: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। एना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
17: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
18: और फिर देखना, मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए थे।
17: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना।
18: हाँ, बिल्कुल।
17: अब आप अपना तौर तरीका बदलिए। इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह, बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है हमें।
18: ओह, आओ भाई बाबा डॉग, आओ आओ आओ।
14: मेयर साहब, आपको और मैडम एना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई।
19: और डॉग चिंस्की
14: की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
16: शुक्रिया, शुक्रिया। ओहो, आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए।
20: मुबारक हो मेयर साहब, मुबारक हो। मिसेज एना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है।
21: भाई, मेरी भी हार्दिक बधाई है मेयर साहब।
20: मेरी मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए जनाब।
22: लेकिन ये बात बनी कैसे?
18: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लियाकत कैप्टन? अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा,
7: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया।
23: मम्मी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
7: मारिया, बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता
23: हूं। ओ मम्मी, ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था।
7: हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
18: मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा। शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
21: अवश्य जाइए, अवश्य जाइए। बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही शोभा देता है।
20: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
2: कई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
21: हुजूर, इस गरीब को भूल न जाइएगा, अब मुझे आप ही का सहारा है।
2: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
18: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
23: ओफो, आपकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है।
18: क्या?
23: अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं। पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
0: अंधेर हो
18: गया। क्या हुआ? क्या बात हो गई?
0: अभी अभी अभी अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी।
18: अच्छा।
0: लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर टिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
18: सर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने।
0: पूरी बात तो सुनिए साहब।
18: क्या?
0: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही
18: दिया। तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत
5: है? मेरे साथ ठीक कहते हैं।
0: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था।
18: कोई लफंगा था। क्या बकते हो तुम?
0: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
18: अरे,
0: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भोंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया, और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
18: ये कहीं नहीं लिखा है, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
0: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
20: क्या बदतमीजी है ये?
0: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
18: क्या कहा?
0: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहिबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
5: पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए। आप पढ़िए।
21: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर, कुल मिलाकर ये लोग।
18: बंद करो ये बकवास।
8: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफ़ी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे, बताओ।
21: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
20: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है।
8: नहीं नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
5: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जरूरत हो सकती?
18: तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से।
8: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
18: कौन?
9: मेयर साहब हाजिर हैं।
18: क्या बात है, तुम कौन हो?
9: सरकारी हरकारा।
18: सरकारी हरकारा?
9: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं और होटल में रुके हैं।
18: अच्छा?
9: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
18: क्या? इंस्पेक्टर जनरल?

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साय के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
2: जहां पे सवेरा

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ऐ मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे

0: यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
1: तब तक आपकी उम्र क्या थी?
0: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल,
0: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
2: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले ख़त्म होते ही उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ मिल गया, ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजर रही है आँख से, तो मैं काफ़ी
2: चमागे चमा।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर,
2: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है, इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वहाँ कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहाँ जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
2: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी होंगी?
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, वी शरणम की सारी,
2: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था 5 आने में, वहाँ पे आ गए, कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो 5 आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: मैं क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे, बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती शूटिंग रहो सब। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमत भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार रखकर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपना उस तरह सोचने लग गया, जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले, तो सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं विदाउट आर्टिस्ट है, उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना, लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे जोश वाले, तो हमने वो शॉट यश जी के पेपर लिया और वो शॉट ले लिए,
1: वाह वाह।
0: तो यश जी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो यश जी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो उस वक्त तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये यूं गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए होते इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया वो चीज़, उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया, और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ पे थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीज़ें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कंप्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ 2-4 दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे, तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी,
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा आप देखने आइए, तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, 4-5 शो के बाद आता हूँ, मैं बोला आज देख लीजिए फिर 5वें में फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी,
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ। फिर आहिस्ता से कहा, मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा, ऐसे फॉरन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे मैं आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं 3 पिक्चर बनाऊँगा। एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा, मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप 3rd असिस्टेंट रख लीजिए, 5वां रख लीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब, मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंसी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की, वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी जाओ, तेरे को छोड़ के आ जाएगा, वो मुझे एक माँ छोड़ देता था, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती हैं याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था या 8 लेते थे, और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे उसमें। जैसे हम ट्रक में बैठते थे, कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए, और हम लोग सब जो है चुप बैठे थे, वो तो हम दादर सब लोग उतरते थे।
1: हाँ।
0: वहाँ से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहाँ भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइकला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में।
1: हाँ हाँ।
0: बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहाँ से किंग सर्कल से घर। हाँ। पे तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं।

0: साथ में ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग।
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज़्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब इन्होंने इनके संग की थी, वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है, बचपन से साथ में थे उनके।
1: हाँ हाँ।
0: तो वो यहाँ आ गए, अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोडक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीज़ें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था।
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीज़ों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

0: नीयत भर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: यारी छूटे

अब चाहे लग जाए कड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे लग जाए कड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मन तुझे नहीं।

आ

0: चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझे नियत कर ली,
1: मैंने हंस कर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे ना
1: या दुनिया,
0: अब चल मारो।

0: वार्तालाप करते करते पहले में, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा, अपने आप खाओ, ठीक है, ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश तू क्या कर रहा है। मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं। और एक दिन मैं लेट हो गया तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदाजी हो गया। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना हीरो
1: हो गई।
0: हाँ, और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो। अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है या कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहां पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूं क्यों गया।
2: हाँ।
0: तो ऐसा भी था। तो अलबत्ता खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यशजी ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो, मैं तो
2: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपरहिट हो गई,
0: सुपर
2: बहुत चली,
0: बहुत चली,
2: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद
0: उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वो जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन मेक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी,
0: तो वैसे ही पॉइंट मैं बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चरें बहुत देखी है, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है, ये आपको हूट कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो इंटरकॉलेजेट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्ता एनीवेज वहाँ देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी, देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं?
1: अरे बाप रे।
0: तो जय जी ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था पहले मुझसे बोला हुआ, पूछो, मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने, तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाएं, तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया,
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ,
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी,
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप चोर है, लिखा बच्चे के हाथ में, मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं, तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है। फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई, मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: तुम मुझे
0: कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ बैठा
1: हूँ,
0: समथिंग लाइक दैट, मैंने 25 हफ्ते, फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज नरेशन में ये सब मत बोलो, चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी, और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का इंग्लिश,
1: शॉर्ट
0: बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे, अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी हो गई थी वो
1: जंजीर,
0: तो अब तो मैं हीरो हिट हो गया हूँ। तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें, समथिंग कुछ छोटा मोटा, सलीम जावेद भी साथ में थे, हमने कहा लेकिन ये शूट ज़्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज़्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए, और इनकी डेटें भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की, शशि कपूर जो थे
1: वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था, उनको छोटे भाई का रोल करना था, अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे, तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है, अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना उससे बेटर रोल है कभी कभी में आपका, दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, एक खुद के लिए एक गुलशन
1: राय की,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए,
0: हाँ कोई बोल देता बीज डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है जो बोलने में ऐसा ना लगे कि बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया कि भाई देखिए लेंथ वाइज हुआ है, पर सोच लो मैं इसका बड़ा भाई लगूँ छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे, जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए। ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है, इन लोगों ने भी सलीम जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट हो गए?
0: अब हो गया सब जगह, तो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में ही चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम ढिल्लो, दो ही गाने थे। वो कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश देसाई री रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े,
0: बहुत बड़े, मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और यश जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात को करते होते फौरन कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो यश जी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: हाँ, वो जो आपने नरेशन के समय
0: वही कह, तो कहने लगे नहीं बेटा वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स में होता है देवन वर्मा, गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पे गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवन वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो यश जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम देखिए हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यश जी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज़्यादा उस वक्त बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज, तो कहने लगे ठीक है हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी। कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में वो माने भी और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी।
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था। बाद में कुछ आपस में जो भी होगा, नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके थे।
0: मैं बन चुका था
1: तब तक, तो बसेरा
0: आ गई थी। हाँ। बसेरा आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने के भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए।
1: हाँ,
0: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे, मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: हाँ हाँ
0: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था
1: जी जी,
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं, इसमें डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए
1: जी जी जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे, कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे, हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के, बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी।
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं हैं, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उस पिक्चर।
1: अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई। तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे साथ ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या, कहा आपने? मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पर, जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे
1: जी,
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को ऐसा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ, थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफ़ी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। और मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी।
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए ओए।
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
1: अब
0: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश अधिक उत्पादन करेंगे। अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक

अभी आप सुन रहे थे भजने, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों हाजिर हैं कार्यक्रम युवा मंच के साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं हमारी पसंद के गीत। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं हमारी पसंद का ये पहला गीत, जो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा।

युवा साथियों, उम्मीद है कि ये गीत जो हमने आपको सुनवाया वो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। और ये फिल्म थी दम लगा के हाइशा और गायक कलाकार पेपॉन। और कार्यक्रम के अगले गीत भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में गाया ये गीत फिल्म नमस्ते लंदन से। उम्मीद करते हैं कि ये गीत भी आपको पसंद आएगा।

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और युवा साथियों, उम्मीद है कि ये जो गीत आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत जो हम लाए हैं आपके लिए, हमारी पसंद का।

Ram Masala. युवा साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मीत ब्रदर्स की आवाज में गया ये गीत फिल्म ड्रीम गर्ल से। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको जरूर पसंद आएगा जो दिल के बहुत ही करीब है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कुछ गजलें। 6:30 पर कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी में बातचीत का विषय रहेगा खुम्ब उत्पादन हेतु प्रशिक्षण। 9:00 का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 9:15 पर एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में आ सुनिए रामानंद सागर की फिल्मों के गीत। 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और 10:00 आप सुनेंगे रवि बासरीय संगीत सभा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ जानकारी देंगे कोयला खनिज दिवस पर। इसके साथ साथ पर्यटक स्थल बरोट की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में कल के इस कार्यक्रम में आपको देंगे। और साथ ही पर्यावरण में जानकारी होगी उपयोगी पक्षी कबूतर की। तो श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और व्यवहार संबंधी चिंताओं सहित आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को शामिल किया गया है। इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक व्यापक और जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिशा निर्देशों का जारी किया जाना प्रत्येक बच्चे के लिए सुलभ, समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच केंद्र सरकार ने बच्चों में मधुमेह को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाता है। स्वास्थ्य विभाग ने शिमला जिला के रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास में टीबी मामलों से जुड़ी खबरों को भ्रामक बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नर्सिंग छात्रावास में केवल 2 छात्राएं टीबी पॉजिटिव पाई गई थी, जिनका समय पर उपचार शुरू किया गया। इनमें से एक छात्रा पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि दूसरी छात्रा नियमित इलाज पर है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और केवल आधिकारिक व प्रमाणिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील भी की है। प्रदेश भाजपा पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। पार्टी उपाध्यक्ष व विधायक विपिन परमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम व नगर निकाय चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को झूठे वादों से ठगा है और अब जनता उन्हें इन चुनावों में जवाब देने के लिए तैयार है। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। राज्यसभा सांसद व कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने प्रदेश में हो रहे नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों की चर्चा करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वार्ड में उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें नए चेहरों, युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन रखा गया है।
1: हिमाचल प्रदेश में जहां भी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस वहां पे जीत रही है। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कहता हूं कि पालमपुर तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी वहां पे लगभग सभी सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। और जो आपकी स्मार्ट सिटी धर्मशाला की बात रही, यहां पे कांग्रेस पार्टी संगठित है। हर एक वार्ड में हमने कैंडिडेट दे दिए हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित है। और यहां पे जो है हम धर्मशाला में भी जो नगर निगम का चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहां पे जो कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल 4 मई को सुबह 11 बजे 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 81,411 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में आज एक निजी बस के अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से 26 यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आनी में कल शाम हुई सड़क दुर्घटना में घायल 2 अध्यापक

0: सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र की टटियाणा पंचायत में लगातार दूसरी बार सभी जन प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इस पंचायत में प्रधान पद के लिए पूनम शर्मा, उपप्रधान पद के लिए दाताराम शर्मा, बीडीसी सदस्य के लिए प्रियंका शर्मा के नाम पर सहमति बनी है। सर्वसम्मति से उपप्रधान चुने गए दाताराम शर्मा ने बताया कि सभी पदाधिकारी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पंचायत के विकास को नई गति देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:06 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कुछ गजलें।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ गजलें आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिंजरा।

कार्यक्रम दी सारे ही भैणा जो साढ़ा प्यार भरा नमस्कार कन्नै भैनों हाजिर हैं कार्यक्रम मिंजरा कन्नै कन्नै अज के इस कार्यक्रम च अहां सुना कर दिन तुसां जो प्यारे प्यारे दे लोकगीत कन्नै कार्यक्रम दा आरंभ करना है इस प्यारे दे लोकगीत कन्नै।

भैनों इस कार्यक्रम च अहां तो हां जो प्यारे प्यारे दे लोक गीत सुनांदे न कने अज जेड़े कार्यक्रम च हां लोक गीत हुण सुनवाया तुहाई ओ था बलदेव व साथियों दी आवाज़ च कने कार्यक्रम दा अगला लोक गीत तुहें सुनवा देना निमो चौधरी दी आवाज़ च।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में

0: होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे ही किसान बागवान भाइयों भैनों का अपने इस टियाले च स्वागत करते हैं। कने अज टियाले पर मिंजो कने शोभा बढ़ा देन जोधा बाऊ राम राम।
1: राम राम जी, राम राम लोग का भाऊ, और ठीक ठाक न?
0: बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक तक तो होना। दिखा अंबर नहीं बहना दिया, अज मैं सोचा हा रोनकी बोला था पारे ते प्यारू चाचू, बोले मुंडूए छुट्टी है ना।
1: अच्छा,
0: तो कणका का कोई बोले बड्डी लेंगे, पर अंबर जेड़ा सा प्या गए आई है कने, तिन्नी जेड़ा सा खलल भी पाई थी है ना।
1: हाँ पाई है कने, दिखा जलू बरदा बोलते तालू सीत है, जरा उपरे पहाड़ी इलाके बखे बरत है ना, तो सीत जरा सा हो जाता, कने बर्फबारी भी जरा सा उपर हुआ कर दी है।
0: बिल्कुल,
1: कने निचले इलाके का भाइया यहाँ दिखा कि बरखा लगी थी तिथु भी
0: बिल्कुल लगी हुई, कने अंबर जरा नेरा हा प्या गई,
1: कने ये अंबर बड़ा डरांदा अजकल दिन का, क्योंकि बढ़ाइए टाइम चलियो।
0: हाँ जी
1: है ना जी, कर मैं दिखा लोगों लसन बया है ना, हाली गठा में जती है कने स्वाइत्या
0: स्वाइत्या।
1: ओ मैं दिखा लमा पिया लसन भी, कने थोड़े देर जमींदार भी दिखा दे उपरे वखी कि ज्यादा बरखा हो जाएंगे तो फिर असा क्या हाथ लगना, तो बरखा चलू होना चाहिए है, तलू होनी है नी, तो चलू जी अहां दे
0: फसल
1: लैने का बेला होंगे तो फिर भाई ये बरी पौंदा है ना जी। तो भाई ऐसा होंगे कि कुछ अहां दे स्थानीय लोग जो होंगे स्थानीय देवी देवतों जो भी मनाते, कने पहला ओहरा जरा सा उतु मंदिर चढ़ाते, कने तिथु जाते, कने लोग भजन गाते, तो इस तरीके ने भी जरा ऐसा एक लोक मान्यता है कि अहां दे इंद्र देव जरा सा प्रसन्न होंगे, कने जरूर जरा सा बरखा च थोड़े आराम देंगे।
0: बिल्कुल, पर एक गल मैं जो भाव और दिखी ना, किसान भी दिखा हूं कितने तेज हुई है ना, प्यारू प्या गए तिन्नी तरपाल लई, कने पटिया चखडेरी खटेरी खटारी कण, कने ढक्की ढुकी इतनी बधिया, मैं बोले भी ठीक किया बधिया, कने मिंजो ढक दे तो अंबर आई भी गया, दो पटियां मैं ढकिया है ना, कने मैं बोले चलो सकानी भी है बाद फिर खुंभ उत्पादन ताई जिहड़ा सा प्रशिक्षण है ना, कने देखा अहां दा हर एक जिहड़ा किसान है सा चाहदा कि एक अतिरिक्त आमदनी तुसी यो मिले है ना, ता इहदी ताई जिहड़ा सा अहां दा किसान जिहड़ा सा खेतीबाड़ी कन्ने कन्ने जिहड़ा सा खुंभ उत्पादन, खुंभ जिहड़ा जोदा पाउ सा नहीं अहां दे जेड़े स्याणे होंदे बणा च जाके टटमोर बोलदे है ना।
1: हां बतमोर बोलदे है ना जी, अपने अपने नाम होंदे ते ना दे ना जी।
0: हां जी हां जी,
1: कने कोई छछियां बोलदे है ना जी,
0: कने
1: कोई मशरूम बोलदे है ना जी, कोई खुंभ बोलदे, ता ये बड़े सारे नाम जरा सही दे है ना
0: जी। हां जी,
1: कने कुतु कुतु किन्ने किन्ने इहदा उत्पादन हुंदा है, किस तरीके ने जणे इहनां दे नाम भी जरा सही हुंदे रहंदे, कुतु डिंगरी बोलदे,
0: डिंगरी बोलदे। हां जी हां जी हां जी, ठीक बोला इथवान। ता देखा ए जेड़े इंस है इदी ताई जेड़ा सबते बड़ी गल ता मैनूं वधिया ए लगदी कि जमीना दी विजा जरूरत नहीं हुंदी, इक बंद कमरे ते जेड़ा छोटे दे कमरे ते शुरुआत करी सकदा किसान है ना।
1: बिल्कुल,
0: कने ज्यादा खर्चा भी नहीं आउंदा इहदी ताई है ना, कने एक गल यह होंगी कि इस तापमान दिखना पौंदा भाई है ना, कितने ते कितने डिग्री जड़ा अंश है, ताई अहां प्रशिक्षण की गल तां करदे कि इस कम करने च तुहां कौन कौन चुनौतियां आनियां है ना, कितना तुहां तापमान रखना,
1: बिल्कुल
0: साफ सफाई तुहां कितनी रखनी है, कुछ किस्म की जी तुहां डिंगरी लाया डिंगरी किस्म लगानी है कि कौन लगानी है ना, इहदी ताई अहां दे दिखा पालमपुर यूनिवर्सिटी हुई सोलन च भी जिहड़ा सा खुंभ अनुसंधान केंद्र है, उत्थे भी जिहड़ा सा प्रशिक्षण जिहड़ा सा मिलदे ने है ना। पर यह है कि जानकारी लेके ही कोई भी काम अहां दा युवा करे तां कम में कुछ च भी घाटा नहीं है जो पाओ है ना।
1: हाँ ये तो बड़ी खरी गल गलाई, कर मैं तो बोलता कि जरा जे मारा कृषि विभाग है या कोई यूनिवर्सिटी है जी, पालमपुर यूनिवर्सिटी की गल करिए या सोलन की गल करिए, तो तू टाइमे टाइमे पर जरा ऐसा प्रशिक्षण चलते रहते हैं।
0: बिल्कुल जी,
1: है ना जी, किसी भी तरह का प्रशिक्षण है जरूरी नहीं खुंभ उत्पादन का, कुछ किसान साथी कुछ और कम भी करना चाहते हैं, तो सारे प्रशिक्षण सारे प्रशिक्षण की जानकारी होना चाहिए, ट्रेनिंग जरा लेंदे ना तो इसकी जानकारी होना चाहिए। हाँ खुंभ उत्पादन की गल करें तो इसकी भी जरा ऐसा एक ट्रेनिंग होंगी है, एक प्रशिक्षण होंगे, तो इसकी जानकारी रखी करी जलू प्रशिक्षण होना तो इतों जाके संपर्क करना, फिर तो जरा ऐसा उत्पादन ले सकते कम कर सकते, बिना प्रशिक्षण लोग का कुछ भी नहीं होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक लाया, तो
1: इलम जरा सीखना बड़ा जरूरी है,
0: कुछ भी चीजा चली जा इलम जरा सा बंदे होना ही चाहिए है ना। तो इस कमे का एक यह भी फायदा है कि खर्चा भी घट लगता, कहने कमाई भी चौखी है ना।
1: सही गल है
0: कि मांग जरा सा होटलों चाह चली आ, तो होटलों च भी मांग है, कहने हूँ बाजारे च भी दी मांग जरा सा खूब रही है ना,
1: विवाह शादियों से बड़ी ज्यादा मांग हुई है ना, पालक पनीर हुई है, कहने ऐसा सोगी सोगी है, मशरूम मशरूम है ना, पालक मशरूम की सब्जी भी जरा असा जो खाने मिलती है, कहने होटलों च भी जरा ऐसा काफी जरा सा मांग है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो अहाँ के किसान जरा सा सबसे पहले तो तुम अपने किसान साथियों नज़दीकी तुम्हारा जरा ब्लॉक ऑफिस पौधा उ बागवानी विभाग के अधिकारियों कने गल करा, कने उ जाइए तुम जरा सा अपना फार्म भराई सकते निधि ताई है ना प्रशिक्षण सेवर कुथू लगा दा पे इहदी जानकारी तुहां जिहड़ा सा अपने नजदीकी ब्लॉक ऑफिस जाई के ले सकदे ने है ना।
1: सही गल है।
0: ता किसान साथियों ए ता थी जानकारी कने हुण तुहां ए लई चलना कहि कि कम्मे दा वेला चलिया कने अहां दे किसान भी थके होणे ने है ना। ता रौनक मेले पाहे लई चलदे है ना जो दा बाऊ
1: तवा सुनदे ए लोकगीत
0: जी।

0: तो किसान साथी दिखा असा सुनया लोक गीत कने इस लोक गीते दे बाद असा फिर ते जानकारी दा जेड़ा सा पिटारू खोलिया है
1: जी
0: कने जानकारी दे पिटारू ते असा कढ़िया है कि कदू वाली सब्जियां जेड़ा सा असा कियां लगाए सकदे ना ना जी,
1: जी जी
0: तो वह सुन दे जानकारी।
2: अगर हमारा किसान भाई उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी करता है और फसलों का प्रबंधन जो है सही स्वरूप में करता है, तो उसको किसी भी फसल से जो है पैदावार जो है सही स्वरूप में मिलेगी, उसका सही मूल्य मिलेगा। आज हम कद्दू प्रजातीय फसलों की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जाए, इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु आज हम संग है डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जो की प्राध्यापक है और पूर्व में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: हमारे सुनने वालों को बताइए कि जब भी हमने फसलों की जानकारी लेनी होती है तो उन्नत किस्मों का जिक्र जो है सबसे पहले आता है। कद्दू पर जाती है फसलें जैसे खीरा हुआ, घिया हुआ, तोरी हुआ, करेला हुआ, चप्पन कद्दू हुआ या दूसरे कद्दू हुए, उनकी उन्नत किस्में जो है कौन कौन सी है?
3: ठाकुर जी, जहाँ तक कद्दू वर्गीय फसलें जैसे आपने बताया खीरा, करेला, घिया, समर स्क्वैश, इसको चप्पन कद्दू के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा भी कई सारी फसलें जैसे तोरी है और कद्दू है, ये फसलें भी किसान भाई लगाते हैं। परंतु जो आप कमाई के माध्यम से अगर देखें तो चार फसलें जो हैं वो मुख्य तौर पर किसान भाई जो हैं वो कांगड़ा जिला और इससे लगते जो हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जिला हैं उनमें लगाते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर खीरा है, करेला है, घिया है और समर स्क्वैश। इनसे किसानों को काफी फायदा रहता है गर्मियों और बरसात में समय में लगाने से। तो जहां तक प्रजातियों की बात है, आजकल किसान भाई ज्यादातर जो कोशिश रहती है वो संकर किस्मों की तरफ रहती है, हाइब्रिड वैरायटीज की तरफ रहती है। तो मैं हाइब्रिड वैरायटीज की जहां तक बात करूं, जहां तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित किस्मों की बात है, उसमें अगर आप खीरे की बात करें तो उसमें पूसा संयोग और सोलन से सोलन हाइब्रिड वन और सोलन हाइब्रिड दो, ये दो किस्में जो हाइब्रिड की हैं ये लगाई जाती हैं। और इसके अलावा अभी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से भी आप देखते हैं कि खीरा जो है वो पॉली हाउस में भी ये एक मुख्य फसल है
2: जी।
3: और बहुत ही कमाई का जरिया है और उसके लिए एक विशेष प्रजाति की किस्में जो है वो लगाई जाती हैं। तो उसमें जो है वो अभी हमने एक नई किस्म जो है वो हिम पालम खीरा एक नंबर वो प्रजाति लगाई है। ये प्रजाति जो होती है वो बिना परागण, बिना फर्टिलाइजेशन के जो है वो फल बनाती है, इसको हम पार्थेनोकार्पिक किस्में कहते हैं।
2: अच्छा।
3: क्योंकि आप देखते हैं कि इसके जो नर और जो मादा फूल हैं वो अलग अलग स्थान पर एक ही पौधे के ऊपर होते हैं। इसका जो पर परागण है वो कीड़ा मकोड़े मधुमक्खी के जरिए से होता है
2: जी।
3: परागण जो है वो मादा के फूल पर पहुंचेगा तभी जो है वो फल बन पाएगा। इसलिए जब हम पॉली हाउस में लगाते हैं तो उसके अंदर तो मधुमक्खी नहीं होती है, तो अब हमें कैसे फल बनेगा जब वो परागण उसके ऊपर होगा नहीं तो
2: जी।
3: तो इसलिए वो हमें ऐसी किस्में चाहिए वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बना दे। तो ये जो नई प्रजाति की किस्में है इसमें हिमपालम खीरा वन जो है और ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये जो आपकी पार्थेनोकार्पिक जो खीरा की किस्में है इनका बीज अगर आप बाजार में लें तो एक बीज जो है वो 7 से 10 रुपए का होता है। किसानों की हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई थी कि आप हमें किस्म दो ताकि हमें बीज की जो सबसे अधिक कीमत हम जो वो दे रहे हैं उसका हमारी जो समस्या का समाधान हो। तो ये प्रजाति निकाली गई और एक किस्म और हम निकालने जा रहे हैं। एक मैंने आपको बताया हिमपालम कीरावन, ये गहरे हरे रंग की है, और जो दूसरी किस्म है क्योंकि कुछ जो हमारे जो कंज्यूमर्स रहते हैं जो खरीदने वाले हैं उनकी डिमांड, ग्राहकों की जो रुझान है वो है हल्के हरे रंग की किस्मों की तरफ भी। तो एक हल्के हरे रंग की प्रजाति तैयार है और वो भी हम शीघ्र ही किसानों तक पहुंचा देंगे। अब उसमें जो कुछ हमारी जो कार्रवाई रहती है कि किस तरह से एक किस्म को है वो अनुमोदित किया जाता है वो कार्रवाई रह गई है, अदरवाइज ये किस्म जो है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो ये किस्में किसान लगा सकते हैं पॉली हाउस के लिए। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका बीज जो है वो किसान खुद बना सकते हैं। जब वो खुद बना लेंगे तो जो कीमत का जो सबसे बड़ा समस्या थी उसका निवारण अपने आप ही हो गया है। ये मैं विशेष तौर पर किसानों के लिए ये बताना चाहूंगा कि अब हमने ये किस्म तैयार कर ली है। जहां तक करेले की किस्मों की बात है, करेले में आप जानते हैं कि इसमें भी एक गहरा हरा रंग और हल्का हरे रंग की दो प्रकार की किस्में, बहुत पहले जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसमें तो यह है कि सोलन हरा सोलन सफेद है, परंतु किसानों का फिर रुझान जो है वो जो हाइब्रिड संकर किस्म की तरफ है। तो आप अपने तजुर्बे के अनुसार जिस निजी कंपनी की आपको लगता है कि हाइब्रिड अच्छा है उसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का हरित और पूसा विशेष, ये दो किस्में भी करेले की बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से जो हमारी बॉटल गॉर्ड है जिसको हम घिया बोलते हैं, ये भी दो प्रकार का रहता है, एक लंबा रहता है जिसको हम लोकली डांडी बोलते हैं और एक गोल रहता है जिसको हम घिया बोलते हैं। तो इनकी भी आप किस्में लगा सकते हैं जिसमें अरका बहार और पूसा मेघदूत और पूसा नवीन, ये किस्में बहुत अच्छी हैं, आप इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप निजी कंपनियों की आपकी अपनी तजर्बे के अनुसार जो लगा सकते हैं। मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा कि जो अनुमोदित किस्में हमारी किताब में हैं आप उन्हीं को लगाएं और जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अनुसरण करेंगे तो आपको फायदा होगा। जहां तक एक समर स्क्वैश जिसको चप्पन कद्दू कहते हैं, उसमें हमारे एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो रिसर्च स्टेशन है हमारा कटराई से, वहां से दो किस्में जो है वो बहुत अच्छी अनुमोदित हुई है, जिसमें पूसा अलंकार और ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, ये दो किस्में हैं और दोनों ही किस्में बहुत अच्छी हैं। तो किसान भाई इन किस्मों को लगा सकते हैं
2: जी। तो लगाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए और बीजोपचार की विधि क्या होनी चाहिए?
3: हम दो तरह से कद्दूवर्गीय फसलों को लगा सकते हैं। एक हम सीधे खेत में बीज जो है वो बिजाई कर देते हैं
2: जी।
3: और दूसरा आजकल एक आ रहे हैं कि आप देखते हैं कि प्लास्टिक की ट्रे रहती है जिसमें 50 जो है वो छेद रहते हैं, आप जिनको प्रो ट्रेज के नाम से कहा जाता है, और उसमें आप वो एक मिश्रण आता है जिसमें कोकोपीट, परलाइट और बर्मिकुलाइट, कोकोपीट का 3 भाग, बर्मिकुलाइट और परलाइट एक एक भाग जो है वो इसका आप मिश्रण बनाएंगे, और इस मिश्रण को आप उन छेदों में भर करके एक एक बीज हर छेद में अगर आप लगा देंगे तो वो ये उससे ये फायदा रहता है कि आप जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा तापमान में कभी बहुत तापमान तेज तापमान 25-26 डिग्री तक पहुंच गया था और आज जैसे मौसम खराब है, बारिश हो गया, ठंडा हो गया, तो कई बार ये जो फरवरी मार्च में जो ये फ्लक्चुएशंस रहती हैं तापमान में, इसकी वजह से जो जमाव है बीज का उसमें कई बार समस्याएं आती हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो ये जो हम प्रो ट्रेज रिकमेंड करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप इनको किसी छोटी सी पॉलीथीन शीट से ढक करके और बीज जो है वो अपना पौधा तैयार हो जाता है। जब पौधा तैयार हो गया 2 या 4 पत्ते की अवस्था में आ गया तो आप वो उस पौधे को जो मिश्रण हमने डाला उसके साथ उसकी जड़ें जो है जुड़ गई होती हैं, तो वो मिश्रण के साथ ही आप जो है वो जाकर के उसको निकाल करके जो अपने खेत तैयार किया है उसमें जाकर के रुपाई कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो आपका जो एक टाइम जो है कि आपकी क्रॉप थोड़ी जल्दी आ जाएगी और दूसरा ये होगा कि जो आपको नुकसान होता था कई बार जो तापमान के बढ़ने और घटने की वजह से, तो वो जो बीज का सड़ना जो है वो कम रहेगा और आपके जो है बीज में सबसे ज्यादा कीमत किसान बहन करता है तो उसकी जो है वो भरपाई आराम से की जा सकती है। तो और एक अगर ये प्रो ट्रेज नहीं है तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी शादियां हो रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो है वो आपके पेपर ग्लासेस आते हैं
2: जी,
3: तो उन ग्लासेस को आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये जो कोकोपीट, बर्मिकुलाइट और परलाइट की जो मैंने बात की, ये तो खरीदना पड़ेगा बाजार से, परंतु हमारे पास अपना जो है बर्मी कंपोस्ट है, अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं तो गला सड़ा जो गोबर खाद है, रेत ले लें और मिट्टी ले लें, तीनों को एक एक भाग, एक भाग बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, एक भाग आपका मिट्टी और एक भाग आपका रेत का, इसका मिश्रण उन गिलास में भर दें, या तो प्लास्टिक के हैं या कागज के आ रहे हैं, जो भी कप आ रहे हैं उसमें आप ये भर करके और बीज उसमें जो है वो बिजाई कर दें और उसको किसी ऐसी जगह रख लें जहां से आप उसको ढक भी सकते हैं और पॉलीथीन शीट अगर मिल जाए, नहीं तो आप अपने बरामदे में भी रख सकते हैं, जनवरी में कर सकते हैं ये काम आप, अब तो थोड़ा टाइम बढ़ गया, तो उससे क्या होगा कि ये जो है फसल जो है वो आपकी जल्दी तैयार होने की संभावना
2: है पूर्व तैयार,
3: और किसान भाइयों को तो मालूम ही है कि जब हमारी फसल जो समय से अगर 10-15 दिन पहले आ जाती है तो उसकी कीमत अधिक मिलती है। जैसे अभी खीरा मार्च अप्रैल में तो उसकी कीमत 25-30 इवन 40 रुपए किलो तक रहती है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ता है मई जून में तो 10-15 रुपए तक कीमत आ जाती है। तो अगेती फसल तैयार करना भी किसानों के लिए फायदेमंद होता है, तो इस विधि को अपना सकते हैं। साथ ही मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे नौजवान है, अगर ये प्रो ट्रेज और ये जो कप वाली जो मैंने विधि बताई, इसमें पौधे उगा करके वो सड़क के किनारे रख करके, बहुत सारी आजकल लोग जो है वो इस तरह के
2: पदार्थ लेते हैं
3: तो वो एक गिलास 10-15 रुपए में वो जो पौधा है वो बिक जाता है
2: जी।
3: तो उससे जो हमारे नौजवान है उनको बहुत फायदा हो सकता है, 2 या 3 रुपया खर्चा आएगा और 15 रुपए में बिक जाएगा या 10 या 15 रुपए में, तो बहुत अच्छी इस तरह आमदनी जो है वो हमारे अर्जित की जा सकती है।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे दूसरे फसलों में जो बीजोपचार की विधा रहती है तो इसको भी बीजोपचार करना,
3: हाँ किसानों को ये हमारी तरफ से सलाह रहती है कि कोई भी बीज आप लगाते हैं उसका उपचार करें, वही जो आपको बहुत सारे पहले भी मेरे साथी आपको बता चुके होंगे, बेवेस्टीन के नाम से एक बड़े बाजार में आराम से ये दवाई मिल जाती है, हमारे जो कृषि विभाग है वो भी इस दवाई को देता है बेवेस्टीन, ये 3 ग्राम 1 किलो बीज की मात्रा के हिसाब से आप इसका उपचार करें, एक पतली सी परत जो है वो पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में आती है, उसकी एक पतली सी परत जो है वो बीज के ऊपर आ जानी चाहिए, क्योंकि ये कई सारे जो हमारे मिट्टी से शुरू होने वाली बीमारियां हैं जिसमें जड़ सड़न रोग बहुत रहता है, उन बीमारियों के लिए इसका फायदा रहता है। तो आप जरूर बेवेस्टीन से, और भी कई सारे थेरम है, कैप्टान है, परंतु कई जगह जगह वो मिल जाते हैं, कई जगह नहीं मिलते हैं। मात्रा एक ही है, 3 ग्राम 1 किलो के बीज के हिसाब से उपचार करें। बेवेस्टीन जो है वो रेयरली अवेलेबल है, तो आप उसको प्रयोग में ला सकते
2: जी,
3: हैं।
2: तो अगर मुख्य खेत में लगानी है जहाँ जो हमने रोपाई करनी है, तो उस परिस्थिति में जो है खेत को तैयार करने की विधा क्या रहती है?
3: बाकी फसलों के लिए जैसे हम 2 से 3 जो है वो जुताई करके और खेत को समतल करके, और जब हम खेत को तैयार

0: कर रहे होते हैं, जुताई कर रहे होते हैं, चाहे ट्रैक्टर के माध्यम से या बैलों के माध्यम से, तो कनाल की बात कर 10 क्विंटल एक कनाल में गला सड़ा गोबर खाद, अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो 4 से 5 क्विंटल जो है वो एक कनाल में आप उसको
1: यानी
0: जो है
1: कि
0: वो
1: केचुआ खाद हो तो 4 से 5 क्विंटल प्रति कनाल
0: प्रति कनाल तो
1: जी।
0: आप इसको खेत को तैयारी के समय ही डाल दें, और उसके बाद समतल करके फिर आप इसके जो आपको मालूम है कि इसकी जो बेलनुमा ये प्रजातियां रहती हैं, इसके लिए हमारे को जो इसके जिसको हम फासला बोलते हैं पौधे से
1: पौधे
0: पौधे
1: से पौधे
0: और जो हमारा कतारों के बीच का है
1: जी
0: वो थोड़ा ज्यादा रहता है, लगभग 1 से 1.25 मीटर जो है वो दो कतारों के बीच में, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ, अलग अलग
1: फसल
0: भी
1: फसल
0: रहता
1: पर
0: है,
1: निर्भर करता
0: निर्भर
1: है।
0: करता है। और जैसे खीरा है तो 75 से 90 सेंटीमीटर पौधे से पौधे का फासला रखना है, और घिये में लगभग ये 1 से 1.25 मीटर के बीच में रहता है, और जो हमारा करेला है उसमें भी खीरे की तरह 75 से 90 सेंटीमीटर का फासला रहता है। ये तीन फसलें जो मुख्य तौर पर ये बेलनुमा फसलें हैं, इनमें तो आपने इस तरह से करना है। और जो समर स्क्वैश है, चपण कद्दू है, ये हमारी जो है वो झाड़ी नुमा किस्म है, जिसको हम बुश टाइप वैरायटी कहते हैं,
1: जी
0: तो इसकी बेल नहीं होगी, तो इसका फासला जो वो आप रखेंगे 60 से 90 सेंटीमीटर जो है वो आप दो कतारों के बीच में, और 45 से 60 सेंटीमीटर जो है वो आप दो पौधों के बीच का फासला
1: जी
0: रखेंगे।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है हमारे कीड़े और बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप होता है, क्योंकि गर्मियों की फसल है तो प्रकोप जो है ज्यादा होता है, तो कद्दू प्रजातीय फसलों में मुख्य मुख्य कीड़े और बीमारियां कौन से जिनका प्रकोप होता है?
0: किसान भाई भली भांति जानते होंगे कि कीड़ों का इन कद्दूवर्गीय फसलों में बहुत नुकसान रहता है।
1: जी
0: अगर आप जैसे शुरुआत में देखते हैं, जब हमारा जो पौधा है 2 या 4 पत्ते की अवस्था में आता है, तो एक लाल मक्खी, रेड पंपकिन बीटल जिसको हम बोलते हैं, वो इसके पत्तों को खा जाती है, और अगर उस अवस्था में नहीं आई और हमारा फूल आने प्रारंभ हो गया तो ये मक्खी उस समय आ जाती है अप्रैल के महीने में, क्योंकि आजकल तापमान ज्यादा तो मार्च में संभावना रह रही है, अदरवाइज इसका जो प्रकोप रहता है वो अप्रैल के महीने में आता है। तो आप देखेंगे वो लाल छोटी सी मक्खी होती है और बड़ी स्मार्ट मक्खी है, स्मार्ट इन द सेंस कि अगर आप उसके पास जाएंगे एकदम से वो गायब हो जाती है,
1: जी
0: तो उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। परंतु शुरू की अवस्था में आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो जब लाल मक्खी नजर आए तो उसको पकड़ करके मार दें, तो एक नुकसान पत्तों को भी खा रही है और फूलों को भी खा रही है। तो इसका जो आप नियंत्रण कर सकते हैं वो एक साइपरमिथ्रिन दवाई जो है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डाल करके आप इसका छिड़काव करेंगे तो ये मक्खी जो है वो मर जाएगी।
1: जी तो ये
0: तो
1: फूल आने से पहले ही करना पड़ता है
0: हाँ,
1: कैसे?
0: जब नजर आएगी।
1: जी तो इसके अलावा और बीमारियां कौन सी लगती है
0: पर
1: इसमें?
0: इस फल मक्खी का निदान के लिए मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप एक मेलाथियोन दवाई आती है, उस दवाई को आप हमारे यहाँ मिट्टी के कई सारे बर्तन जिसको हम कूजे बोलते हैं या लोकली भाषा में,
1: जी
0: आप उसमें पानी डाल करके और ये दवाई उसमें डाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़ नहीं है तो चीनी डाल दें, और ये जो है पानी जहरीला हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने वो मेलाथियोन दवाई डाल दी, इसको आप अपने खेत में रख दें। इस मक्खी का एक बड़ा अच्छा एक करेक्टर है कि ये जब अंडे देती है उसके बाद पानी पीती है,
1: जी
0: तो जब पानी का वो हमने बर्तन रखा है वो पानी पिएगी तो मर जाएगी। तो
1: जी
0: हम स्प्रे ना करके
1: ये
0: हम
1: तरीका
0: इस
1: अपना
0: तरह से भी
1: सकते हैं।
0: अपना सकते हैं, और छोटे क्षेत्र में अगर किसानों ने लगाया तो मैं चाहूंगा कि जब शुरुआत में ही इसके नर और मादा फूल, मैंने कहा अलग अलग हैं, आप इसकी पहचान भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो मादा फूल होता है उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे खीरा बन गया है, डाननी वाली जगह डाननी बन गई, करेले वाली जगह लग रहा है कि छोटा सा करेला बन गया है, तो वो है मादा फूल, और जिसमें ये नहीं है वो है नर फूल। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मादा फूल है उसको आप कागज का लिफाफे जो हमारे पास उपलब्ध रहते हैं या कोई थैलियां पड़ी हो तो उसके साथ आप ढक
1: जी
0: दें, है ना, तो वो बढ़िया सुंदर आकार के खीरे घीये उस लिफाफे के अंदर बन जाएंगे।
1: जी
0: तो आप इस तरह से भी इसका निदान कर सकते हैं। जहां तक बीमारियों की संभावनाएं हैं तो इसमें जो मुख्य तौर पर जो बीमारी रहती है वो है चूर्ण सित्ता रोग, जिसको
1: जी
0: हम पाउडरी माइल्ड्यू बोलते हैं जी। तो आप देखते हैं कि सफेद सफेद रंग का पाउडर जो है वो इसके पत्तों के ऊपर आ जाता है, तो अगर शुरुआती दौर में ही जब इसके जो है वो धब्बे नजर आने प्रारंभ हो तो आप क्या कर सकते हैं, कैराथेन नाम की दवाई आती है, एक कनाल में जो है वो 30 लीटर का घोल बनाना होता है, तो इसका दवाई का जो मात्रा है वो 15 मिलीलीटर है, कि एक पंप में 7.5 मिलीलीटर दवाई ही डलेगी। तो आप इसको डाल करके छिड़काव करें, आप देखेंगे कि एक ही छिड़काव अगर आपने सही समय पर कर दिया है तो इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो जाता है।
1: जी
0: तो मुख्य तौर पर जो है वो यही एक बीमारी है। दूसरा आपका फल सड़न रोग भी आता है, परंतु उसका जो कारण रहता है कि आपके खेत में अगर जो ये जो रेड पंपकिन बीटल है या जो फ्रूट फ्लाई है जिसको मैंने बोला फल मक्खी है, जब ये क्या करती है छेद कर देती है, तो वो छेद करेगी तो उससे क्या होता है कि बीमारियां के लिए भी एंट्री मिल जाती है, रास्ता मिल
1: मिल
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। जी
0: अगर हम कीड़ों मकोड़ों को रोकने में कामयाब हो जाएं तो शायद ही फल सड़न रोग जो है वो नजर आए।
1: तो ऐसे में जो है ये कद्दू प्रजातियां फसलें हैं अलग अलग, पैदावार जो है प्रति कनाल कितनी कितनी मिल सके?
0: प्रजाति के अनुसार होता है, परंतु मोटे तौर पर अगर 1 हेक्टेयर में हम बोलते हैं कि 300 से 500 क्विंटल आ जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि 15 से 20 क्विंटल जो है कम से कम
1: प्रति
0: पैदावार
1: कनाल
0: जो
1: हो।
0: एक कनाल से इन फसलों की मोटे तौर पर आ जाती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को जो है कद्दू प्रजातीय फसलों की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जाए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। किसान साथियों, इस जानकारी है तो जड़ा से जरूर लाभ लेना है ना, जो
3: भाव
2: लगाए कद्दू कद्दू तो
3: भी बिल्कुल जी, कद्दू में बेला तो अभी रखा हुआ पुराना ना।
2: अच्छा,
3: लाई त्याग ने बेला लगी पी हल्की हल्की होना, हूँ जिंया मौसम के हिसाब ने होंगे ना, जिस ज्यादा गर्मी होनी तो लगी पौनी हूँ, अहा उपर इलाके थोड़ी बरखा भी रह दी
2: जी,
3: तो थोड़ा जहा जरा सह रहा है जलू बरसाती के बाद मौसम होना ना, इसके बाद थोड़ी है सही रह।
2: चलो वधिया, तो देखा हूँ ट्याले पर फिरते शामिल कर दे, प्यारा दे लोग गीत है ना
3: जी।

0: जी किसान साथियों, तुहें ये प्यारा दिया लोकगीत सुनाया, कने आशा करते हैं तुहें ये पसंद भी आया होना है ना।
1: जी
0: ता जो दा पाओ ट्याले दी घड़ी है पाया, देखिए ता बोला दी भई साड़ा जाने दा बेला भी होदा है ना।
1: हाँ
0: ता दिखा जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम च प्रस्तुति जेड़ी दित्ती सह दित्ती सुनील कुमार होरां दी है ना।
1: हाँ जी
0: कने
1: बिल्कुल जी, प्रस्तुति जितेंद्र पाल जी कने मारे तकनीकी सहयोग जरा सा सुरेंद्र कुमार होने दिता कने हूँ जरा सा संजय दी अनुमति। अच्छा
0: अच्छा
1: जी
0: जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओ, अब एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं। ईमेल पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता आकाशवाणी धर्मशाला कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़ है सबसे महत्वपूर्ण।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच, 17 मई को होगा मतदान। भाजपा ने कहा, चुनाव के दौरान पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने और उनका हक छीनने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित बच्चों में मधुमेह को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच कल 4 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 269 जबकि मंडी जिले में 214 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापिस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। शहरी निकाय चुनावों के साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों की निगरानी व अनुशासन बनाए रखने के लिए भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा एक विशेष अनुशासन समिति गठित की गई है। यह समिति किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की स्थिति में तुरंत कार्यवाही की अनुशंसा करेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा इन चुनावों में पूरी मजबूती व एकजुटता के साथ उतर रही है और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश भाजपा पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। पार्टी उपाध्यक्ष व विधायक विपिन परमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम व नगर निकाय चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को झूठे वादों से ठगा है और अब जनता उन्हें इन चुनावों में जवाब देने के लिए तैयार है। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। राज्यसभा सांसद व कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने प्रदेश में हो रहे नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वार्ड में उम्मीदवार उतारे हैं जिनमें नए चेहरों, युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन रखा गया है।
1: हिमाचल प्रदेश में जहां भी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस वहां पे जीत रही है। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कहता हूं कि पालमपुर तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी वहां पे लगभग सभी सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। और जो आपकी स्मार्ट सिटी धर्मशाला की बात रही, यहां पे कांग्रेस पार्टी संगठित है। हर एक वार्ड में हमने कैंडिडेट दे दिए हैं तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित है। और यहां पे जो है हम धर्मशाला में भी जो नगर निगम का चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहां पे जो कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे।
0: विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर महिलाओं को हक देने के बजाय उनका हक छीनने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सम्मान निधि के नाम पर महिलाओं को सम्मान देने वाली योजनाएं बंद की हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 18 से 69 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अपने इस अपमान को कभी नहीं सहेगी और इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में आज एक निजी बस के अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से 26 यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सांसद अनुराग ठाकुर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आनी में कल शाम हुई सड़क दुर्घटना में घायल 2 अध्यापिकाओं का आज IGMC शिमला में कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कुल्लू पीपल्स

0: स्टेशन शिमला के अध्यक्ष ने भी शिमला से जारी एक बयान में इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और व्यवहार संबंधी चिंताओं सहित आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को शामिल किया गया है। इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक व्यापक और जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिशा निर्देशों को जारी किया जाना प्रत्येक बच्चे के लिए सुलभ, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच केंद्र सरकार ने बच्चों में मधुमेह को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल 4 मई को सुबह 11 बजे 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 81,411 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। इस बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड ने CBSE सब कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिणाम सहित अंतिम उत्तर कुंजी भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने शिमला जिले के रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास में टीबी मामलों से जुड़ी खबरों को भ्रामक बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि नर्सिंग छात्रावास में केवल 2 छात्राएं टीबी पॉजिटिव पाई गई थी, जिनका समय पर उपचार शुरू किया गया। इनमें से एक छात्रा पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि दूसरी छात्रा नियमित इलाज पर है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और केवल आधिकारिक व प्रमाणिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज वर्षा व ओलावृष्टि हुई है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट आई है। सुबह के समय कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए कल 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 5 मई तक रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलों के साथ बारिश होगी। ऊंचाई वाले इलाके लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र की टटियाणा पंचायत में लगातार दूसरी बार सभी जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इस पंचायत में प्रधान पद के लिए पूनम शर्मा, उपप्रधान पद के लिए दाताराम शर्मा, BDC सदस्य के लिए प्रियंका शर्मा के नाम पर सहमति बनी है। सर्वसम्मति से उपप्रधान चुने गए दाताराम शर्मा ने बताया कि सभी पदाधिकारी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पंचायत के विकास को नई गति देने की कोशिश की जाएगी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने सहित विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में यूनेस्को के वर्ष 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय पत्रकारिता ने हमेशा समय की चुनौतियों के बीच खड़े होकर सच की आवाज बुलंद की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी मीडिया जगत से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच, 17 मई को होगा मतदान। भाजपा ने कहा चुनाव के दौरान पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने और उनका हक छीनने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित बच्चों में मधुमेह को लेकर जारी किए दिशा निर्देश और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: मीडियो वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। देश कान सुनिए।

0: समूह स्वरों में देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हमारी अगली
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 8 बजे हैं और अब समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लकी अली की आवाज में गाए इस गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सोनू निगम की आवाज में गाया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देश का गान।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam, and the Union Territory of Puducherry to be held tomorrow. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In West Bengal, counting will take place across 77 centres. We have more from our correspondent.
3: After an intense campaign and record voter participation, all eyes are now on tomorrow's verdict, which will decide who governs West Bengal for the next 5 years. According to the Election Commission, postal ballots will be counted first, followed by electronic voting machines in multiple rounds. Results for 293 constituencies are expected through the day, while the remaining Faulta constituency will go for the fresh polling later this month. Central forces, state police personnel and election officials deployed to ensure a smooth and transparent counting process. CCTV surveillance and multi-layer security arrangements have been put in place at strong rooms and counting halls. Early trends are expected within the first few hours of counting, while the final picture may be emerged by evening. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Assam, the fate of 722 candidates will be decided tomorrow. Our Guwahati correspondent has filed this report.
4: In Assam, elaborate multi-layered security arrangements have been put in place to ensure a smooth and transparent counting process in the state. The entire exercise will be closely monitored by 126 counting observers. They will be supported by nearly 6,000 counting personnel and over 2,300 micro-observers deployed across the state. Assam Chief Electoral Officer Anurag Goel has described the 2026 assembly elections as historic, with Assam witnessing a single-phase poll after nearly 3 to 3.5 decades. He also added that the election recorded the highest voter turnout in the last 5 assembly polls, reflecting strong public participation in the democratic process. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
2: Moving on to the southern part of India, in Kerala, foolproof security arrangements have been put in place for the counting process. Our Thiruvananthapuram correspondent has the details.
5: More than 32,000 police officials were deployed across 43 locations where counting for the 140 assembly constituencies will be held in Keralam tomorrow. District electoral officers have been instructed to impose additional restrictions if necessary. The third round of randomization and allotment of officials to the counting tables will be held at 5 a.m. tomorrow. With only hours left before the beginning of counting, the CPM-led LDF, Congress-led UDF and BJP-led NDA have expressed strong confidence of better performance this time. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
2: Tamil Nadu is witnessing an intense multi-cornered battle with the primary contest between the ruling DMK-led Secular Progressive Alliance and the opposition AIADMK-led National Democratic Alliance. We have more in this report.
6: This election has a lot of new entrants in the state politics. This is also the election where the new gen got seriously interested in electoral politics in the state. As writing, drawing and wall poster culture has been banned, the political parties have made use of feeds in all of the social media. Narratives and counter-narratives spread like wildfire in this election. The electoral politics has become a different ball game or online verbal duel with little or no depth in understanding. With all the present and future requirements of adherence to tools of social media, political parties have come to a point where they will have to compete with a generation which is too quick in making their own judgments. Joy with Sushil Tiwari from Chennai.
2: In Puducherry, 6 counting centers have been set up in the Union Territory. A total of 294 candidates are awaiting the outcome of the contest. Here is more from our correspondent on the ground.
7: With the people's verdict set to be revealed shortly, political parties and the public alike are eagerly awaiting the outcome that will shape Puducherry's future for the next 5 years. As many as 859 officials have been deployed for counting duties. Entry into the counting halls will be allowed only after verification of QR code-based identity cards issued by the Election Commission.

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की फिल्मों के गीत।

0: श्रोताओं, एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में आज आप सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक रामानंद सारकर की फिल्मों के गीत। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

अभी आप सुन रहे थे एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की फिल्मों के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रूबकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
1: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
2: ये आकाशवाणी है।
1: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौक

0: बैठक तक पहुंचाया।
1: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
2: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती है, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अच्छे रखना होगा।
0: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजय दत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियां ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुंचाता रहा है।
0: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे सन 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मेरे डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ रहा कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
1: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गाने गानों पर, लोकगीतों के बड़ी बहार थी सा, इसमें साहित्य भी कहीं होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो तब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा कि जबकि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया। इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है आप और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने में बुलाया जाने लगा वहाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है, जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
1: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्व भाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्व भाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
4: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ये आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
1: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
5: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
1: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
0: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
1: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
6: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज़ को, मेरे तलफ़ को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ युवावाणी में भी मैं काफ़ी काम किया हूँ एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफ़ी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बम्बई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहाँ जाता रहा। तो ये नशा जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
1: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक।

0: प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
1: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो है वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती, ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
0: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं, चाहे ध्रुपद हो, ख्याल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो ऑल इंडिया रेडियो के, 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है। That was the highest fee of All India Radio, top grade musicians.

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी, हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारीलाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो, फिर एक वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
0: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हूँ, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
3: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला, रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हफीज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बालसुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्यावंदनम श्रीनिवास राव, टी के गोविंद राव, यमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तरह वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, यमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल

0: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
1: It was such happy times and not so long ago.
0: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
1: But they're back again, just like a long lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक है। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
5: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी उनकी संस्कृति को पहुँचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुँचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुंच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
0: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
6: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं, शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत। वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था। नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाह गाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबक है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरह।
2: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
7: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति। आकाशवाणी आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रविवासरीय संगीत सभा रिले की जाएगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, ICCR संगीत समारोह प्रमुख हैं। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितार वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत की है आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार देव नारायण मिश्र ने। नीरज मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग दरबारी में आलाप, जोड़ और झाला से कर रहे हैं। विलंबित मसीद खानी गत, मध्य लय और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स एडिशन ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय नीरज मिश्रा, अ डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सितार माइस्ट्रो रिप्रेजेंटिंग द रिच कल्चरल एंड म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ रिनोन्ड बनारस घराना। Born in Varanasi, Neeraj Mishra's formal initiation into the world of music began at early age of 5 under the able guidance of his father and guru, Amarnath Mishra. Later on, Neeraj Mishra earned his Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti and completed M.Muse in Sitar from Banaras Hindu University and M.Phil from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. An A-grade artist of Akashwani, Neeraj Mishra has performed in various prestigious festivals across India and abroad, such as Sankat Mochan Sangeet Samaroh, Kashi Ganga Mahotsav, Taj Mahotsav, Kabira Festival, ICCR Horizon Series, World Cultural Festival in India, and has captivated audiences across Europe, Middle East, Italy, Switzerland and France. In tonight's program, accompanying him on tabla is Dev Narayan Mishra, a B high grade artist of Akashwani. Neeraj Mishra is beginning his sitar recital tonight with Alap Jod Jhala in Rag Darbari. Vilambit Masit Khanigat, Madhilay and Drutgat is set to 3 taal.

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन 3 ताल, मध्य लय is in ek taal and drut gat is set to 3 taal.

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Accompanying him on tabla was Dev Narayan Mishra. Recorded earlier at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि की 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।